नमस्कार। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोतवा, शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त 2026। हमारे स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:56 होने को हैं। अब कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के प्रसारण आरंभ होते हैं। हमारे प्रसारण आपके लिए DRM के 909 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप पर न्यूज़ ऑन AIR नाम के ऐप से उपलब्ध हैं।

0: 918 किलो हर्ट्ज, मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजे चाहते हैं, पहले हिंदी और तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन दिल्ली से रिले किए जाएंगे। समाचारों के पश्चात आप सुनेंगे भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदना। आइए समाचार सुने।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक

जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभी श्रोताओं को नमस्कार। आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ की तरफ से वंदना कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्रोताओं, वंदना की शुरुआत इस पावन पुनीत श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की स्तुति के साथ करते हैं। भगवान भोलेनाथ, जिन्हें महादेव, देवों के देव, आशुतोष भगवान शंकर के रूप में हम लोग पूजते हैं, मानते हैं, बड़ा अद्भुत इनका रूप है, बड़ा विचित्र इनका पहनावा और श्रृंगार है। गले में मुंडमाल, पहनने को मृगशाल, सर्प को धारण किया, चंद्रमा को अपने मस्तक पर टांक लिया, अपनी जटाओं में गंगा को इन्होंने आश्रय प्रदान किया। डमरू जैसा वाद्य यंत्र, बैल की सवारी, हाथ में त्रिशूल, एकदम निर्जन कैलाश पर्वत पर जाकर के विराजमान हुए। अपनी भक्ति में, आराधना में, अपनी साधना में लीन इस चराचर जगत को मनवांछित वरदान प्रदान करने वाले भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम है।

भोलेनाथ की महिमा इस भक्ति रचना के माध्यम से आपने सुनी। हमारे संत महात्माओं ने मनुष्य को विचार करने के लिए कई बार कई तरह के प्रश्न अपने भजनों के माध्यम से छोड़े हैं। अद्भुत संदेश उन्होंने भक्ति रचना

में लिखकर दिया ताकि मनुष्य चेत जाए और समय रहते प्रभु के नाम का उच्चारण कर ले। एक ऐसी ही रचना अनूप चलोटा की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने जीवात्मा को पिंजरे का तोता मानते हुए संबोधित किया है। आइए सुनें।

तो ये मधुर भक्ति रचनाएं वंदना कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं कमल पारीख आज आपके साथ हूँ। हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ आप हमें ट्यून कर सकते हैं DRM के 909 किलोहर्ट्ज़, FM के 100.1 MHz और आपके अपने हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन पर। जी हाँ, न्यूज़ ऑन AIR यह एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करें और फिर लाइव स्टेशन में जाकर के सर्च करें सूरतगढ़ SURATGARH और फिर जहाँ चाहें जब चाहें जुड़े हमारे साथ, सुने हमारे सजीव प्रसारण। अब हम आपको एक कृष्ण भजन सुनवाते हैं विपिन सचदेव और साथियों की आवाज़ों में।

गोकुल के राज दुलारे हैं, मेरे नंद बाबा का क्या कहना। नंदलाला न सिर्फ गोकुल के राज दुलारे हैं, बल्कि अपने भक्तों के आंखों के तारे हैं, हम सबको प्यारे हैं। कितनी अद्भुत लीला श्री कृष्ण की, और उसका अद्भुत और शानदार वर्णन महाकवि सूरदास ने किया। सूरदास कहते हैं कि जो देख नहीं पाते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण किया, उनकी बाल लीलाओं का गुणगान किया, वो बहुत अद्भुत है। उनके पढ़कर देखने पर महसूस होता है कि एक सजीव नेत्रों से देखने वाला व्यक्ति भी शायद इतना शानदार निरूपण किसी भी बालक की लीलाओं का, उनकी चपलता का, उनकी चंचलता का नहीं कर सकता। श्रोताओ, इस समय आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर्स पर। आइए सुने सीमा मिश्रा की आवाज में ये भक्ति रचना, जिसमें एक भक्त को अपने परमात्मा से मिलने की व्याकुलता है, बेचैनी है, और बार बार उसके मन से एक ही सवाल उठता है कि मेरे पिया से मिलन कब होगा, मेरे परमात्मा से, मेरी आत्मा का साक्षात्कार कब होगा।

0: भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आपने सुना, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। यह समय है चिंतन का, आइए सुने आलेख और वाचक स्वर यशपाल सिंह राठौड़ के।
1: सत्य, समता, अहिंसा, त्याग, करुणा की प्रतिमूर्ति गौतम बुद्ध ने समूची मानवता को सांसारिक कामनाओं के बंधन से मुक्त रहकर प्राणी मात्र के प्रति दया का जो संदेश दिया वह आज भी प्रासंगिक है। शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में महारानी महामाया देवी ने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम रखा गया था सिद्धार्थ, जिसका अर्थ होता है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। बालक के पिता का नाम था राजा शुद्धोधन। गौतम गोत्र में ही जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। इतिहास के सुनहरे पृष्ठों को हम पलटते हैं तो पाते हैं कि सिद्धार्थ के जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा और अन्य 8 ब्राह्मण विद्वानों ने ऐसी एक सामूहिक भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या महान पवित्र व्यक्ति बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ भी बनवाया था। गौतम बुद्ध का जन्मदिन व्यापक रूप से मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। उनका मन बड़ा कोमल था, वे किसी को भी दुखी नहीं देख पाते थे। सिद्धार्थ ने बचपन में गुरु विश्वामित्र के पास वेद उपनिषद का अध्ययन किया, राजकाज युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। इसके अलावा घुड़दौड़ तीर कमान में बड़े प्रवीण माने जाते हैं। समय आने पर सिद्धार्थ का शाक्य कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ और कुछ समय बाद उनके राहुल का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था की, लेकिन ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को सांसारिक बंधनों में नहीं बांध सकी। वसंत ऋतु का समय था। सिद्धार्थ एक दिन बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ व्यक्ति सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार सिद्धार्थ जब बगीचे की सैर को निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी व्यक्ति आ गया। चेहरा उसका पीला था, दूसरों के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे, पीछे पीछे बहुत से लोग थे और इन सभी दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को विचलित कर दिया। उनका मन दुखी हो गया। उनका कहना था, वो क्या जीवन जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बीमारी, क्या वृद्धावस्था, क्या मौत सदा इसी तरह होती रहेगी। चौथी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले तो उसे एक ऐसा सन्यासी दिखाई पड़ा, संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ के जीवन को न केवल आकृष्ट किया बल्कि उनके जीवन में वैराग्य की भावना को बलवती कर दिया। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने सत्य अहिंसा पर बल दिया। उनका कहना था, जीवन में पवित्रता बनाए हुए पूर्णता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है, तृष्णा का त्याग करना, क्योंकि तृष्णा और इच्छा ही दुखों का मूल कारण होता है। यह भी मानना होगा कि सभी संस्कार अनित्य हैं। कर्म को मानव के नैतिक संस्थान का आधार माना जाना चाहिए। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण के अनुसार 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन कुंडा नामक एक लोहार के यहाँ किया और उन्होंने कहा था कि ये भोजन अतुल्य है। इस तरह आज के संदर्भ में आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों, उनकी शिक्षाओं का आत्मसात करें। यही विश्व शांति और कल्याण का मूल मार्ग है।
0: गौतम बुद्ध की बातों को माना जाए, यही कल्याण का मूल मार्ग है। चिंतन कार्यक्रम में भी आपने यशपाल सिंह राठौड़ के विचार सुने।

0: मीडियम वेव 326.7 रुपीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हम आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले सूचना, आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की। श्रोताओं, 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश शाम को ठीक 7 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ आप सुन पाएंगे। और बात करें हमारे यहां से प्रसारित होने वाले नियमित कार्यक्रमों की, प्रातः 7:10 पर खेतिया वास्ती कार्यक्रम होगा। मानस गान हम आपको सुनवाया करते हैं प्रत्येक सुबह 7:20 पर। लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30। विभिन्न समसामयिक और सामाजिक विषयों पर इस कार्यक्रम में कुछ बातें हम आपसे साझा करते हैं, साथ ही कुछ संगीत के साथ आपका मनोरंजन भी करते हैं। प्रसारण समय एक बार फिर से सुन लीजिए, सुबह 7:30। प्रातः 8:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा। 9:10 पर हम आपको सुनवाएंगे बरु मंगल कार्यक्रम। फिल्मी गाने आपके लिए उपलब्ध होंगे सुबह 9:30 से दिन में 12:30 तक लगातार। सुबह 9:30 पर फिल्म संगीत, फिल्म संगीत का प्रोग्राम आज के फनकार प्रातः 10:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत सुबह 11:00 और सैनिकों के लिए कार्यक्रम में कुछ फिल्मी गाने 12:05 पर हम आपको सुनवाएंगे। सुगम संगीत सुनिएगा 12:30। खेत खलिहान कार्यक्रम में 12:50 पर जानकारी दी जाएगी कीटनाशक छिड़काव में सावधानियां विषय पर। घर आंगन कार्यक्रम लेकर शीला कुमारी आपकी सेवा में हाजिर होंगे दिन में 1:05 पर। रंगीलो राजस्थान, स्वतंत्रता का सम्मान, भविष्य को प्रोत्साहन, आजादी के आंदोलन में महिलाओं की भूमिका और इसी तरह के कुछ अन्य सामूहिक विषय इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। महिलाओं के मनोरंजन हेतु गीत इस कार्यक्रम में भी सुनवाए जाएंगे। दिन में 2:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारी उर्दू सर्विस के प्रसारण आपके लिए उपलब्ध होंगे 2:00 बाद 3:00 से। युववाणी कार्यक्रम होगा संध्या 5:00। इसमें आज के इतिहास के अलावा आप सुनेंगे सोशल मीडिया से सीखने के अवसर, संस्कारों का महत्व, अंधविश्वास और समाज जैसे कुछ विषयों पर जानकारियां। फिल्मी गीत भी सुनवाए जाएंगे। संध्या 6:05 पर सराय की कार्यक्रम होगा। खेतीरी बात टांटिया यूनिवर्सिटी रसात, यह प्रायोजित कार्यक्रम होगा संध्या 7:30। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में कुछ फिल्मी गीत और जानकारी दी जाएगी रात्रि 8:00। स्पोर्ट्स केन रात्रि 8:30 हम दिल्ली से रिले करेंगे। संगीत का सुगम संगीत प्रोग्राम रात्रि 9:15 आप सुन पाएंगे। पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू होगा रात्रि 9:30। हमारे प्रसारण प्रातः 5:50 पर आरंभ होती हैं, जो जारी रहते हैं रात 11:10 तक लगातार। आपने ट्यून किया है कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ 918 किलोहर्ट्ज पर। 6:55 होने को हैं। आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन दिल्ली से रिले किया जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। अशीतितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं सन्देशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् संबोधनं

0: दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नयांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The president's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English

0: भैंस लियावा तो जे संभव होए तो एक सागे कोई जानी जान है बिना अपन ले जानो चाहिए, और जे कोई पशु चिकित्सक अपन उपलब्ध हो जावे तो बन भी सागे ले जानो चाहिए, और पूरी जांच परख करके ही अपन है दुधारू पशु लेना चाहिए। तो आ बातों को ध्यान रख गए अपन किसान भाइयों, जी हाँ अपन जिक्र करियो कि कृषि के सागे सागे अपनो एक सहायक रोजगार है पशुपालन, तो इमा अपा ज्यादा मुनाफा कमा सका। तो किसान भाइयों अब कार्यक्रम को टाइम पूरा होयो, अब चला राम राम सा राम राम।
1: आइए एक लोक भजन सुनाएं।

हीरालाल प्रजापति से राजस्थानी लोक रचना आपने सुनी। ये समय है गोस्वामी तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस के दैनिक पाठ का। मानस गान में इन दिनों आप सुन रहे हैं लंका कांड का सस्वर पाठ। आज प्रस्तुत है भाग 335, मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह का।

वानर और आसुरी सेना का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वानर भालुओं का संहार करते रावण को लक्ष्मण ने चुनौती दी। रावण तो अपने पुत्र घाती को ढूंढ ही रहा था। उसने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। लक्ष्मण ने

वानर और आसुरी सेना का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वानर भालुओं का संहार करते रावण को लक्ष्मण ने चुनौती दी। रावण तो अपने पुत्र घाती को ढूंढ ही रहा था। उसने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। लक्ष्मण ने उसके लाखों अस्त्र काट डाले, उसके रथ को वाणों से खंडित कर दिया। 100-100 वाण उसके 10 सिरों पर मारे और उतने ही वाण उसकी छाती में। रावण मूर्छित हो गया, किंतु मूर्छा अवस्था से उठते ही उसने ब्रह्मा से प्राप्त अस्त्र लक्ष्मण को छाती में मारा, जिसके प्रहार से वे धरती पर गिर पड़े। रावण ने उन्हें उठा लेने की चेष्टा की, किंतु शेषनाग के रूप में जिसने पूरे भुवन को एक तिनके के समान अपने फन पर उठा रखा है, उसे भला रावण कैसे उठा सकता। रावण को लक्ष्मण के शरीर को उठाने का प्रयत्न करते देख हनुमान जो आगे आए तो उसने उन पर घूंसे से प्रहार किया। अपने को संभालते हुए हनुमान ने उसे जो घूंसा मारा तो रावण एक बार फिर मूर्छित हो गया। इस बार मूर्छा टूटने पर रावण यज्ञ करने के लिए अपने महल की ओर चल पड़ा।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में मानस गाना आपने सुना।
1: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

गांधीजी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

সে তো আজ 14 আগস্ট হয়। 14 আগস্ট কার দিন? সাল 2021 সে জিসে প্রধানমন্ত্রী মহোদয় নে তয় কিয়া কি সে বিভাজন বিভীষিকা দিবস কে রূপ মে মনায়া যায়। विभाजन की विभीषिका यानी बंटने की पीड़ा जो तकलीफदायक है, और बंटवारा भी किसका? हमारे पवित्र देश इस भारत भूमि का, और बंटवारा भी कैसा? कुछ विधर्मी लोगों ने, आतताइयों ने, अत्याचारियों ने दूसरे हिस्से से हिंदुस्तान की तरफ आने वाली ट्रेनें लाशों से पाट दी। लाशें भी कैसी, सुनकर के उस विभत्स दृश्य को याद करके मन में पीड़ा होती है। किसी लाश का हाथ नहीं, किसी लाश को चाकुओं से इतना गोदा गया कि उसकी पहचान मुश्किल। कोई लाश ऐसी जिसका सिर नहीं है, मुंड विहीन, महिलाओं के स्तन काट करके, उनके साथ दुराचार करके, उन्हें लाश बना करके ट्रेन में लाद दिया गया और वो ट्रेन हिंदुस्तान पहुंची। विभाजन की विभीषिका का दर्द सिर्फ वो लोग करीब से देख पाए जो बिछड़ गए अपनों से, जिनके कुछ परिवारजन सरहद के उस पार रह गए। वो सरहद, वो सीमा रेखा जो 14 अगस्त 1947 के दिन खींच दी गई। लोगों ने अपने मन को संतुष्ट किया, आकर के धीरे धीरे हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमाई, फिर से नए सिरे से जिंदगी आरंभ की। लेकिन विभाजन की पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ, ऐसा ही है यातनाएं जिन लोगों ने सही है, जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, अपने खून से इस देश को, इस मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उन सभी लोगों को हम याद करते हैं। उनकी स्मृति में हम उनको पुण्य स्मरण करते हुए, शत शत नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है श्रोताओ, हमारा फर्ज है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को

वो सब किससे सुनाएं, वो सब बातें बताएं कि किस तरह से हमारे बहादुर नौजवानों ने युद्ध के दौरान वीरश्री हासिल की, अपने दुश्मन देश को ललकारते हुए रणभूमि में पीठ नहीं दिखाई, और जो स्वतंत्रता, जो आजादी आज हम भोग रहे हैं, उसकी कीमत अपनी जान दे करके चुकाई। ये देश हमेशा ऐसे लोगों का ऋणी रहेगा।

योगेश का लिखा गीत आपने सुना? तो वो चित्र जब आंखों के सामने स्मृति के रूप में उभर करके आता है तो हमारे पास शब्द नहीं होते। बहुत बार इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अवसर हमारे साथ होते हैं कि हम किसी बात को याद करते हैं और याद करने के बाद आंखें भीग आती है। संवेदनाएं हैं, ऐसा होना स्वाभाविक है,

जिन लोगों के मन में समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने हम वतन लोगों के प्रति कुछ श्रद्धा है, कुछ प्रेम है, उन लोगों का संवेदनशील होना बनता है, उन्हें पीड़ा पहुंचती है, दिल टूटता है। लेकिन इन सब के बीच फिर एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमें खड़ा होना पड़ता है, राष्ट्र की अस्मिता के लिए, अपनी पहचान बचाने के लिए, और इसलिए कि देश विरोधी ताकतें, जिनका उद्देश्य हमारे राष्ट्र को कमजोर करना है, वे मजबूत ना हो जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र के लिए जो बन पड़े करें। जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर के लाठी गोरी से सीमा पर लड़ाई लड़ें। गोली खाना चलाना कतई आवश्यक नहीं है। बहुत छोटे छोटे काम हैं जिनके माध्यम से हम अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। पढ़ाई करते समय आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जो विद्या मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उस अध्ययन के माध्यम से मुझे राष्ट्र की सेवा करनी है। क्योंकि विद्या प्राप्त करके व्यक्ति विनयशील बनता है, और विनयशील व्यक्ति अपने आचरण के माध्यम से लोकप्रिय हो जाता है, और लोकप्रिय व्यक्ति राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम होता है। ऐसे लोगों के पास ही लक्ष्मी आती है। यही लोग उद्यमशील व्यापारी बनकर के देश को आर्थिक तरक्की प्रदान करते हैं। पढ़ाई करें, अच्छी बातें सीखें, और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को हमेशा अदा करें। क्योंकि आज के समय सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे लिए राष्ट्रीय एकता की।

श्रुतौ, मनुष्य का मन, उसका मस्तिष्क बड़ा विचित्र होता है। अक्सर हम जिन बातों को भूलने का प्रयास करते हैं वो सबसे ज्यादा याद आती है। जो व्यक्ति हमसे बिछड़ जाते हैं वे सबसे ज्यादा याद आते हैं। जिन लोगों के साथ हमारा मन मुटाव हो जाता है, न जाने क्यों मन बार बार उसी व्यक्ति से बात करने का होता है। जब कभी ऐसा लगे तो आगे बढ़कर के संवाद स्थापित करने की कोशिश करें। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति भी आपसे बातचीत करने का इच्छुक हो और ये बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो, ऐसा कतई नहीं। दो पक्षकार, दो राष्ट्र किन्हीं समान मुद्दों पर बातचीत करके, संवाद स्थापित करके बड़ी बड़ी समस्याओं का हल भी निकाल सकते हैं। खैर, कार्यक्रम में हम बातें और भी करेंगे। जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी को। यह है कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़, 918 किलोहर्ट्ज़ पर, और मैं कमल पारीख आपका अपना रेडियो दोस्त आज आपके साथ हूँ। आइए प्रोग्राम में एक गाना सुनें।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, मुकेश का गया गीत आपने सुना रजनीगंधा फिल्म से। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति जहाँ जिस स्थिति में है वो अपना कर्तव्य अच्छे से कर ले, तो इतने में हमारा राष्ट्र, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, साल 2047 तक हम इसे विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसान अच्छे से अन्न का उत्पादन करें, फैक्ट्री के श्रमिक उसमें बनने वाले उत्पाद को पूरा गुणवत्तापूर्ण और समय पर तैयार करें, किसानों को समय पर खाद व उर्वरक और उन्नत बीज प्राप्त हों, देश में सभी परिवहन के साधन सही समय पर चलें, परिवहन के साधनों को चलने के लिए उचित ईंधन, अच्छी सड़कें, अच्छे रेल मार्ग, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप अच्छे अध्ययन स्थल और उचित फीस के बदले सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन मिले, युवाओं को रोजगार प्राप्त हो,

महिलाओं का सम्मान हो, उनकी रक्षा में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। आम आवाम में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, जाहिलपना, अंधविश्वास, कुरीतियां समाज से दूर हो, लोगों में सामान्य व्यवहार की जानकारी का प्रचार प्रसार हो, सभी लोग एक दूसरे की इज्जत करें, मनुष्य के अलावा जो प्राकृतिक जीव जंतु है, जो वनस्पति है, जो पर्यावरण है, उसकी हम रक्षा करें। बस ये छोटे छोटे काम यदि सब सुचारू हो जाते हैं तो विकसित राष्ट्र बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी सबसे बड़ी शक्ति है हमारे पास उपलब्ध खनिज संसाधन, हमारी युवा शक्ति, हमारी सोच और इस देश का भौगोलिक हिसाब किताब। हिंदुस्तान के लोग कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं। संसार के किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो हिंदुस्तानियों ने अपना लोहा बनवाया है। हमारे यहाँ का विपुल साहित्य भंडार, खेलों में हाल ही के दिनों में प्रदर्शन से जिस तरह से हम लोगों ने मेडल्स जीते हैं, वो शौर्य सुरक्षा की दृष्टि से हमारे द्वारा किए गए काम, अन्न उत्पादन में हमारी आत्मनिर्भरता, क्या नहीं है हिंदुस्तान के पास। हमारे पास सब कुछ है, बस जनता को चाहिए कि वे अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करें, यह न सोचें कि अमुक काम सरकार का है, सरकार करेगी। माना कि बहुत से काम हैं जो सरकार के जिम्मे हैं, सरकार को करने चाहिए, लेकिन सरकार कहीं कोई अलग नहीं है, आप और हम मिलकर के सरकार हैं। किसी व्यक्ति के घर में फालतू दवा पड़ी है, यूं ही घर में रखे रखे वो एक्सपायर होगी, इससे अच्छा है उसे अपने किसी भी नज़दीकी चिकित्सालय में जाकर के उचित व्यक्ति के हाथों में, जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में सौंप दी जाए। आपके घर में कुछ पुराने वस्त्र पड़े हैं, कुछ जूते पड़े हैं, कुछ बच्चों के खिलौने पड़े हैं, कुछ अतिरिक्त बर्तन पड़े हैं, इन्हें उचित स्थान पर उचित व्यक्ति को दे दिया जाए तो जिसके पास इन चीज़ों का अभाव है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपके घर से कचरा निकलेगा, बस ये छोटे छोटे काम हैं जिन्हें समय रहते कर लेना चाहिए और तब हम गर्व से कह सकेंगे कि राष्ट्र के निर्माण में, इसकी उन्नति में हमारा भी योगदान है। और यही बात हम अपने बच्चों को शिक्षा के रूप में भी आगे दे सकते हैं।

गुलाम हैदर के संगीत निर्देशन में जागृति फिल्म के लिए आपने सुना ये गीत, प्रदीप का लिखा हुआ और प्रदीप व साथियों का गाया हुआ। जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि संध्या 7 बजे आप सुनेंगे भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। इसे आकाशवाणी के और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स एक साथ रिले करेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब ज्यादा समय नहीं है, हम आपसे और अधिक बात नहीं कर पाएंगे। फिल्म संगीत के शौकीन श्रोता हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 9:30 बजे से फिल्मी गानों के लिए। और अब सुप्रभात कार्यक्रम से अपने रेडियो मित्र कमल पारिक को इजाजत दें। आज के प्रोग्राम के लिए इस कार्यक्रम की परिकल्पना और गीतों का संयोजन नवीन सिसोदिया ने किया था। आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी सूरतगढ़ को। प्रातः के 8 बजने को है, अब पहले हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी और तत्पश्चात उर्दू में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: का बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है।

0: दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल

0: कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
1: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जल स्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास

0: बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी ना चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी GST से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The president's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कैनेडा ओपन टेनिस में ईगा शांटेक ने एलेना रिबकीना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नशर किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं।

0: देर गए देहरादून में रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशंस मरकज में राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया।
1: हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए, उसके लिए NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है।
2: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली जिलों में बैतरणी और बूढ़ा बलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरणी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गाँव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुक्काम सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदामात कर रहे हैं।
0: ओडिशा में कई मकामात पर लगातार बारिश होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर वहां बारिश हो रही है, कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंझार जिले में आनंदपुर के मकाम पर भी बैतरणी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस तनाजुर में हुकाम ने आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों को चौकस कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। इधर चंपुआ में सैलाब के पानी से एक पुल बह गया है, जिससे सड़क राबते में रुकावट पड़ गई है। बूढ़ा बलंगा दरिया में पानी चढ़ने की वजह से मयूरभंज और बालासोर जिले के निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरब शिमाल मगरब में रफ्ता रफ्ता गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल की समत बढ़ रहा है। फिलहाल ये कोलकाता के तकरीबन 60 किलोमीटर मगरिब और मिदनापुर के 50 किलोमीटर मशरिक शिमाल मशरिक में मरकूज है। इसके जेर असर आज कई जिलों में तेज बारिश होने का इम्कान है। मशरिकी और मगरिबी मिदनापुर, झारग्राम, जनूबी 24 परगना, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में ना जाएं। इधर शिमाली बंगाल में भी आज जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जिले में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। उधर अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा और मुलाजमीन के मुलाजमत के उम्मीदवारों का एहतजाज आज 21वें दिन भी जारी है। मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करने से इनकार किया है और CBI जांच और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे का इरादा किया। मुजाहिरीन ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है ताकि इस मुजाहिरे को मजीद मजबूत बनाया जा सके। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उम्मीदवारों का धरना जारी है। तलबा कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिसमें रियासत भर के हजारों नौजवानों के इकट्ठा होने की तवक्को है। यौम आज़ादी की तकरीबात और इस बड़े तलबा मुजाहिरे के पेश नज़र रांची ज़िला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। तलबा की तिरंगा यात्रा के रास्ते पर और हसास मकामात पर बड़ी तादाद में पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबकीना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। कल रात टोरंटो में खेले गए फाइनल में 7वीं नंबर की ईगा श्यांटेक ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना रिबकीना को 6-2 और 6-3 से हराकर सीजन का अपना पहला टाइटल हासिल किया। इस तरह वो अब पूरे इतमाद के साथ

0: बाद यूएस ओपन टेनिस में कदम रखेंगी। इधर अमेरिका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में खेले गए फाइनल में अपने हमवतन ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। भारत नाइजीरिया के लागोस में मुनाकिदा दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार 35 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर चैंपियन बनकर उभरा है। भारतीय दस्ते ने अंडर 23 और सीनियर मुकाबलों में 13 सोने के, 8 चांदी के और 14 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। भारत ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत विल्किंसन सोड ट्रॉफी भी जीत ली है, जो मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले मुल्क को कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की जानिब से की जाती है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दिन से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मानसून इजलास हंगामे की नज़र, गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी, नीट पेपर लीक मामला छाया रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से मुल्क के मोजिज़ फनकारों को साल 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड तफवीज किए जाने से मुतालिक खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने इस दौरान दिए सदर जमहूरिया के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवार्ड हासिल करने वाले फनकार मिलकर मुल्क का एक ऐसा सकाफती नक्शा पेश करते हैं जिसमें मुल्क की मिट्टी की कहानियां और गीत जुड़े हैं।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जेर तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर ख्वातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव 326.7 पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ भक्ति रचनाएं। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आप सुने उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आज 14 अगस्त है। आज संध्या 7 बजे सुनिएगा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। यह संदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर एक साथ उपलब्ध होगा। समय संध्या 7 बजे। और आइए अब सुने कुछ भक्ति रचनाएं सुगम संगीत में।

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत करीब 340 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से दो दिन के श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले के दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए व्यापक तैयारियां पूरी की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत 340 करोड़ 59 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ वर्चुअल बैठक में ये स्वीकृति दी। श्री चौहान ने इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 216 करोड़ रुपए और कृषि उन्नति योजना के तहत 124 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। राजस्थान के लिए वर्ष 2026-27 में 849 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 509 करोड़ 62 लाख रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को शुभकामनाएं देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि किसानों को समय पर और सुगमता से ऋण सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से दो दिन के श्रीगंगानगर और

0: बीकानेर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे आज श्रीगंगानगर के सादुल शहर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद अनूपगढ़ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद करेंगे और बॉर्डर आउटपोस्ट का अवलोकन करेंगे। श्री शर्मा धान मंडी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद वे आज ही बीकानेर के मेघासर में मेघोजी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण और विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और ड्रोन शो में शामिल होंगे। शाम को वे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में कल ध्वजारोहण करेंगे और युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 में युवाओं से बातचीत करेंगे। इस बीच स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बताया कि आज के ड्रोन शो में एक साथ 600 ड्रोन उड़ान भरेंगे। इसके माध्यम से कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और राष्ट्र से जुड़ी आकर्षक आकृतियां बनाई जाएंगी। स्वाधीनता दिवस से पहले आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सभी जिलों में विभाजन विभीषिका से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में विभाजन के दौरान विस्थापन, पीड़ा और संघर्ष की स्मृतियों को दर्शाया जा रहा है। पाली में कैंडल मार्च और स्मृति संध्या रखी गई है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में लगी प्रदर्शनी में वर्ष 1947 में हुए विभाजन की पीड़ा और संघर्ष को प्रदर्शित किया गया है।
1: जिले में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, 2 मिनट का मौन, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कैंडल मार्च भी आयोजित किए जाएंगे। पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में भी जन भागीदारी के कार्यक्रम होंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी को विभाजन की पीड़ा और संघर्ष से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देना है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत भी विभिन्न गतिविधियां जारी हैं। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: इस बीच हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश भर में परवान पर है। सरकारी कार्यालयों, स्मारकों, प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा थीम पर सजाया गया है। सवाई माधोपुर में जगह जगह तिरंगा कैनवस लगाए गए हैं, जिन पर लोग हस्ताक्षर कर राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति के संदेश लिख सकते हैं। वहीं हर ग्राम पंचायत में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिजनों और सुरक्षा बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों का सम्मान किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और आमजन के प्रति संवेदनशीलता की नीति से काम कर रही है। वे कल जयपुर में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने सीएलजी सदस्यों से पुलिस और जनता के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग का सेतु बनकर सुरक्षित राजस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। श्री शर्मा ने सीएलजी बैठकों को क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा का प्रभावी मंच बनाने को कहा। साथ ही असामाजिक तत्वों, नशे के कारोबार, महिला और बाल सुरक्षा, साइबर अपराध तथा सामाजिक तनाव से जुड़ी सूचनाएं समय पर पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने की अपील की।
2: आज हमको चाहिए कि जनता के अंदर विश्वास हो, पुलिस का विश्वास हो, सीएलजी के सदस्यों का विश्वास हो और अपराधियों में भय हो कि मेरे पड़ोस में सीएलजी का सदस्य रहता है, अगर मैं थोड़ा भी कहीं आगे बढ़ा तो मैं जेल के अंदर जाऊंगा, ये उसको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे अपराध हो या बड़े अपराध हो, छोटे अपराधों से ही बड़ा अपराध होता है। हमको पुलिस और आमजन के बीच में विश्वास, संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण सेतु है, हमें उस सेतु को बनाए रखना है। अच्छी कानून व्यवस्था में पुलिस के साथ ही समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बिना समाज के कुछ नहीं हो सकता।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के अनुसार अगस्त 2026 से शुरू हो रहे भर्ती चक्र में 8,11,000 से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न

0: प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए 5,08,885 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। वहीं उपनिरीक्षक पुनः परीक्षा 2021 में 2,18,000 से अधिक अभ्यर्थी 20 सितंबर को परीक्षा देंगे। सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा 30 अगस्त और सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर को होगी। आयोग के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया में शुचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीकानेर पुलिस ने सीआईआर पोर्टल की मदद से गुम हुए 200 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रेंज के महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि इन फोन को सिर्फ एक महीने में बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है।
1: 200 मोबाइल जो है करीब 50 लाख के हैं जो रेंज टीम ने और जिला पुलिस ने रिकवर किए हैं। कहने को तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन किसी का अगर खोया मोबाइल वापस मिलता है तो उसको बहुत खुशी होती है। कई लोगों के लिए उनके लिए बहुत अमूल्य है। आम लोगों से यही अपील है कि आपका अगर कोई मोबाइल खोता कम से कम उसके एनपीआर या कुछ ना कुछ दर्ज जरूर कराए, वरना यही मोबाइल जो आगे जाके कोई क्राइम में किसी चीज में जैसा आपको देखा होगा उसमें सीरियस क्राइम में भी यूज हो सकता है। तो आप कम से कम एनपीआर दर्ज कराए, थाने में की सूचना अवश्य दे ताकि हम इसको ट्रेस कर पाए।
0: बालोतरा के जानियाने में जल्द ही सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और सीएसआर के फंड से राज्य सरकार को 22 करोड़ रुपए देगा। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में HPCL और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच इस संबंध में MOU हुआ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज से क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के महत्व बेहतर अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि कॉलेज में रिफाइनरी की जरूरतों के अनुरूप रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत करीब 340 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिन के श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले के दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए व्यापक तैयारियां पूरी की। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 9:10 हुए हैं। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम सुने पर मंगल। कलाकार हैं चंपा मेती और साथी।

मारू धन से बाता करा तो भरी भरी

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आपने सुना। कलाकार थे चंपा मेहती और साथी। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने फिल्म संगीत। प्रोग्राम की पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, लक्ष्मी प्यारे का संगीत, आनंद बख्शी की गीत रचना, फिल्म का नाम मिलन।

0: जरूर।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर। हाँ,

मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर को सुने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम है अनजाना।

नंगवानीकार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम मेरा गांव मेरा देश और आवाजें हैं लता मंगेशकर वैभव पद रफी की।

सावन स्पेशल दो गाने आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से 988 किलोहर्ट्ज़ पर। जो लोग हमारे साथ एफएम पर जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम बता दें कि हमारी फ्रीक्वेंसी है 100.1 मेगाहर्ट्ज़। डीआरएम मोड पर हमारे प्रसारण 909 किलोहर्ट्ज़ पर उपलब्ध हैं। यदि आप अभी अपने काम पर निकलना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि हमारे प्रसारण आप मिस न करें, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने एंड्रॉयड फ़ोन, अपने मोबाइल फ़ोन में न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड करें और फिर उसमें लाइव रेडियो सेक्शन में जा कर के सूरतगढ़ को सेलेक्ट करें, SURATGARH। फिर जब चाहें जहाँ चाहें

हमारे प्रसारण आपके लिए उपलब्ध होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे प्रसारणों का मतलब है आपके मनोरंजन की फुल गारंटी। आइए लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडकर को सुने। संतोष आनंद ने गीत लिखा। प्यासा सावन फिल्म के लिए मीठी सी धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार की।

वर्मा मल्लिक की गीत रचना सुनी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन उससे पहले आइए ये दूसरा गाना सुना।

रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। संगीतकार वही लक्ष्मी प्यारे, आनंद बख्शी ने गीत के बोल लिखे और फिल्म का नाम है हमजोली।

0: Efsanesi Bumrağoğlu.
1: Kimse?
2: Aap, dijital arrest mein ho. Dusre kamre mein jaiye. Akele. Aapke parcel mein drugs mile hain. Lambe jayenge.
3: 10 lakh dijiye, bach jayenge.
1: Sir, itne kahan se?
3: Ek link bheja hai. Abhi processing ke liye 2 lakh bhejiye. Baki baad mein.
1: Sir, 2 lakh.
4: Kya hua, papa?
1: Beta, ye keh rahe hai ki mere parcel mein se drugs mile hain.
2: Arre?
1: Kaat diya.
4: Panic mat kijiye, papa. Digital arrest jaisa kuch nahi hota hai. ये सब फ्रॉड है.
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें. अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे.
5: आरबीआई कहता है.
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
7: जी आशुतो, जानकार बनिए, सतर्क रहिए और मनोरंजन के नाम पर इधर उधर मत भटकिए. जुड़े रहिए सिर्फ आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से. और अपने वादे के मुताबिक ये मीठा सा गाना रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से है.

0: रेशम की डोरी
1: ये दो गाना आनंद बख्शी ने लिखा। संगीत से इस गीत को संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने इसे आवाजें दी। फिल्म का नाम साजन।

हसरत की लिखी रचना सुने, रामलाल का संगीत है। वी शांताराम बैनर तले, सेहरा फिल्म के लिए इसे आवाज़ें दी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को आप सुन रहे हैं। ममता फिल्म के लिए गीत लिखा मजरूह ने, धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर को सुने। गीत शकील बतायनी का, संगीत नौशाद का। राहुल थिएटर्स के बैनर तले ये फिल्म है मेरे महबूब।

रवि के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी को सुने। काजल फिल्म के लिए कलाम लिखा साहिर ने।

एक बार फिर से शाहिर का कलाम हम आपको सुनवाते हैं। रोशन का संगीत है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है चित्रलेखा।

शुतुभ से ठीक आधा घंटा बाद यानी सुबह 11 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। हमारे प्रसारण आपको कैसे लगते हैं, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें आप हमें भेज सकते हैं पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, एसएमएस करके, व्हाट्सएप के द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन करके। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। हाल ही में हमने अपने प्रोग्राम्स में कुछ तब्दीलियां की हैं, बदलाव किए हैं। ध्यान से सुने कार्यक्रम विवरण इस केंद्र से प्रत्येक सुबह 6:50 और शाम 6 बजे और दिन में 12 बजे। फिल्म संगीत का प्रोग्राम जारी है। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलेखा फिल्म के लिए लता मंगेशकर को।

लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों को सुनाए। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम नागिन।

हेमंती शुक्ला और यशुदास की आवाजें, गीत रचना इंदु जैन की, संगीत राजकमल का, फिल्म का नाम चश्मे बद्दूर।

यसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ों में मीठा सा गीत आपने सुना। फिल्म थी चश्मेबत्तूर। हेमलता को सुने, गीत और संगीत रविंद्र जैन के। फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से। श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त कमल पारिक के साथ फिल्म संगीत का प्रोग्राम आज के फनकार। बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगला प्रोग्राम होगा आपके अपनी पसंद पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम का नाम अनुरोध गीत। आनंद ले फिल्म संगीत का। कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब सुनिए फरमाइशी प्रोग्राम अनुरोध गीत।

कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार दुर्गा राम नायक की तरफ से। आइए श्रोताओं कार्यक्रम का पहला गीत सुने। पूरब और पश्चिम फिल्म से इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुला सबाहत, किर्त हुजरे, रेहान शेख, नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल सोनू, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल, गांव खोखरावाला से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा, हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा, सार्थक शर्मा, गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ तैमूर और कलीम अंसारी, रघुनाथपुर जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, बदायूं से इसरत खान, शायरा रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज, सैफ खान, ईशान आजम और अरहान खान, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझम, सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, बारां राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, उत्तम नगर दिल्ली से बौद्धराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गांधीनगर गुजरात से जेके परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल, चक 15 पीएस से सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्शपाल मेलबर्न, रॉबिन सिंह जोसन वैंकुवर, झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासू, अर्णव।

आनंद, सत्यम आनंद। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, निप्पी साहनी और सुनीता साहनी। संगरिया से श्याम मिड्ढा और सुमन मिड्ढा। श्रीगंगानगर से नेकीराम बांसीवाल, जॉनी बंसीवाल, धनराज। पीपरलौड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और इनके साथ हैं पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। हनुमानगढ़ टाउन से रज्जाक मोहम्मद, शमी बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान और शहनाज। सिद्धार्थनगर दर्यापुर भांबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले। मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, अभय कुमार सनातनी, रिम्मी, तनुश्री और रेखा देवी। हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादु। कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से इसी गीत के लिए ये हमें व्हाट्सएप संदेश मिला है। विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान सहारण, कीड़ूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा का। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रियाली, पार्थ और इनका पूरा परिवार। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया।

आइए श्रोता वो अब सुने हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहा है मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पालक लुबना और यस मंसूरी। रानी बाजार बीकानेर से रानी झाम और बिट्टू झाम, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, प्राग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन। पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, विमल, आशा, राधिका और इनका पूरा परिवार। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। सूरतगढ़ से लेखराज शाक्य, पवन कुमार, सुरजीत सिंह, रवि कुमार, कुंदन लाल, जीवराज सिंह और उदय सिंह। गांव 4M से कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत सिंह, जसदीप। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव,

अंता चौधरी, सूरतगढ़ से फूसाराम महार, हनुमानगढ़ से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू, राजेंद्र प्रजापति, संजय वैद, पींगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत, कमल साहनी, धुलिया से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उद्यन और अर्पिता, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, धनोरी तेलीवाला, उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया और आयान बाबू, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेशपुरी, टिबंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव और एसके पप्पी, कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, मोहनलाल सुनील, भजनलाल, कैलाश, लक्षिता और नरेंद्र सुथार, लखवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकनाराम, अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक, समर और वेदिका फूलमाली, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी, साबुआना फाजिलका से करण कंबोज, चरण कंबोज, रियांश और परीश कंबोज, बिरमगज गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश कुमार भावसार और सन्नी भावसार, गांव शेरड़ा तहसील भादरा से मिंटू शर्मा, सुशीला, लीलाधर शर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक, फरीदकोट से अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत कौर, गुरप्रीत सिंह, मनप्रीत, करमजीत सिंह, चरणजीत कौर, मनकीरत कौर, गुरसीरत कौर और गुरप्रताप सिंह, रतलाम एमपी से सतीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़, खंडवा मध्य प्रदेश से ममता, संजय और बेबी किट्टू, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, बनवाला हनुमंता, फाजिलका, पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और इनका पूरा परिवार, महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, राजेश, राकेश और ऋषिता, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, शेख मोहम्मद कलीम और डीएच बच्चन, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, गांव 58 एनपी रायसे नगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरबंस लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार मलखट, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी, मोनिका और इनका पूरा परिवार, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, भोपालगढ़ से राजेश, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता आहूजा, ढानी लाल खान नोहर से जावेद खान।

अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान। पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा, आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद, टोनी और भाविक पंचकुला सेक्टर 9 से। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। गांव 22 NTR नोहर हनुमानगढ़ से पवन सुथार, अमरजीत सुथार, मोहनलाल सुथार, सुनील विष्णु, शिव सुथार। राजकोट से जैमिन जैन, हेतल, कृष्णा और राजेश जैन। साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। और इसी गीत के लिए हमें ये व्हाट्सएप संदेश मिला है। गौरव, अनिल, मानसी, कविता और इनका पूरा परिवार नई दिल्ली से। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, नमना, तमना, साइना, विष्णु ढोकिया और ईवा धारनियन।

आयुष होता वो अब सुने। घरौंदा फिल्म का गीत अरुणा लैला और भूपेंद्र की आवाज़ों में, और इस गीत को सुनना चाहा है मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यस मंसूरी, शेरड़ा भादरा हनुमानगढ़ से मिंटू शर्मा, सुशीला, लीलाधर शर्मा, इसी गीत को सुनना चाहा है भांडेर दतिया से राहुल पाल, ज्योति अंजना, हरिमोहन पाल, बेबी लक्ष्य, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान, पूजा परिहार, 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप, मनराज विरक,

बीबी लक्ष्य। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छींपा, कपिल छींपा, ईशान, पूजा परिहार। 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप, मनराज विरक। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति। हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मौनी पारिक, भूपेंद्र पारिक, जगत मंडावरा और राजू मंडावरा। श्री करणपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू कटारिया। भागसर सादुल शहर से मंगतराम धेंगड़ा, सुमन संजना, सचिन कुमार धेंगड़ा। उदयपुर से रमेश नाचीन नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और बाबू भाई चांदीवाला। सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, प्रतीश और मैक्स। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकर्ण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, निधि, निखिल और संजय अंशु वर्मा। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राम, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता और इनका पूरा परिवार। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। नलेश्वर नगर नरवैल महाराष्ट्र से PS नावाकर, निर्मला, विशाल नावाकर। खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम सेन और अक्षय सेन। खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा। अलीका तहसील डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सर्वजीत, रानी, सोनू, रजनी। अमरपुरा जालूखाट से हरीश चंद्र पूनिया। दोलेवाला से स्वर्ण सिंह। कस्बा सैंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर, तासीफ हुसैन, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अहमद अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आली अंसारी। मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापति। संभलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत और विक्रमजीत। नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी और तृप्ति। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की तानिया। पटियाला रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से M खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी और अरीबा हबीबा। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन अंसारी, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार, साईं गायकवाड़। मोताला

महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और आरती सुरलकर, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि गोप और दीपाली गोप, बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

बाबा कोटीर रायगढ़ से, शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान, बाड़ीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, बंगाली पंजर नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती जाह्नवी, वैष्णवी, हर्षल और इनके साथी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, गांव हिप्पर सोगा औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, शायरा बानू शेख, बाबा शेख सिमर और करिश्मा शेख, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकरम, नसीफा परवीन और जहानुल हौदा, नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक, वेदांश, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर, घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, महित्रे, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, रामनिवास, धनंजय टिबलू और पीवी कुलथे, मैन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर, चक 10 एसडीपी लालगढ़ जाटान से रामेश्वर निरानिया, सुमन दिव्या, नूतन पंकज, मेहरचंद, हेमू मनीषा, ब्रिजलाल और रामप्रताप जाखड़, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन और फारिया ताहिर, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी, केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा और भालूराम, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, मोहन करांगले, बसंत राव और पीएस नभाकर, ऊपरकोट मोहल्ला चौखूंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बान और इनका पूरा परिवार, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुड़ी सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी, हिना कासर, हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरभ, साइना और निवान शर्मा, अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, अरविंदर और राज सिंह प्रीतमान, जालंधर सिटी पंजाब से सोनू, रवि राज, गुलशन और लक्की। श्रोताओ, हमें खत भी मिले हैं आपके। पहला पत्र मिला है डब्बाली हरियाणा से जेके बाकोलिया, सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल, मीनू बाकोलिया, गांव 7 जीबी से खरेती राम, मंजू रमन, पवन, मन्नत, दीप और भूमि, गांव लुदेसर से पप्पूराम गाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका, साक्षी देवी, रुचिका, मलोट से जगतार गिल, गैवी गिल और अमनदीप गिल, चौटाला रोड डब्बाली से अंग्रेज सग्घू, सुखविंदर कौर, रॉबिन और डिंपल। आइए सुने आप सबकी पसंद का चिराग फिल्म से ये गीत।

आइए श्रोता अब सुनें मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है चिराग और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने

आइए श्रोता अब सुने धनवान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा है गांव नगराना से लालचंद नाथ, प्रेम, सोनू, मंजू, प्रदीप, अमन, अंकुश, राहुल, रीटा, दीपक, पीयूष और योगेश नाथ। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, पलोमा व ईशानी। इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद, वसीम नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां। बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से हर्षिता, रामेश्वर कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी। राजपुरा से यह खत हमें मिला है हरदीप सिंह, जगवीर सिंह।

ज्वाला सिंह, जगराज और धर्मवीर जोहरड़ का, करणवीर हाउस भुच्चो कैंचियाँ बठिंडा से, प्रेम जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र अभरिंदर सिम्मू दमन, अभिजोत और दमनवीर, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रमेश आदिबा थापा, बिहारी कलोनी लोनी से परवीन डॉम, सरफुद्दीन, कुमारी वली डॉम, कुमारी डब्लू डॉम, मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम और अल्लाह आसमा बेलदार, नई आबादी अबहुर पंजाब से ओम प्रकाश सोनी, साहिल सोनी, अमन करण, महेंद्र बिश्नोई हरिपुरा से, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुरा पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव, बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी, रवि और शिल्पा गर्ग, मंडी हरजीराम मलोट से महेश गर्ग, सुषमा, जशन और विनोद गर्ग, मखू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मुनीश बजाज, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विपान, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी, व्यास कलोनी बीकानेर से अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही, दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शोलाल बेनीवाल, शांति, मंजू, मोहित, हेमंत और अंजू बेनीवाल, अगला खत हमें मिला है गांव बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से रेणु शर्मा, रुद्र शर्मा, वंदना शर्मा, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, भड़बूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विकास और ओम प्रकाश, ग्राम पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंदसोलिया, सेक्टर 67 मोहाली से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक कालका से शुभ चंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपी कमलहोत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्य और भाई सुच्चा पाठक, आरायण राजस्थान से रणजीत सोलंकी, परमजीत कौर सोलंकी, विष्णुदेव, राजवीर, रमन, जस्सू पंवार, जगवीर और इनका पूरा परिवार, छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से फरमाइशी प्रोग्राम अनुरोध गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने। किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज़ों में फिल्म है तपस्या। उस गीत को सुनना चाहा है 32 बीबी से सन्नी शिशपाल रोशनी देवी, 18H केसरी सिंहपुर से गुरबचन सिंह भट्टी, घनजातिया से भगवान दास चौहान, 7S कीकरवाली से बलवंत राम हंसनाथ, भालूराम मदन काटपाल धर्मपाल चोपड़ा विद्या देवी और रुद्र, गांव 2V से रघुवीर सिंह अजयपाल सिंह शक्ति सिंह गुरदीप शेरगिल चंद सिंह सरा, धनुर से डॉक्टर पुरुषोत्तम खन्ना, 8S ढाणी से बाबूलाल सुभाष झाझड़िया मंगलनाथ लालचंद कृष्णलाल चावरिया, गांव 17F केसरी सिंहपुर से पृथ्वीराम जशनदीप नंदराम ताराचंद तीर्थ सिंह जगमेल सिंह और मटिली राठान से जीत सिंह और दिलबाग सिंह, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चन राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी, श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा जगमोहन सिंह अरनेजा दिनेश कुमार शर्मा नरेश कुमार शर्मा, सूर्यवाला टिब्बी हनुमानगढ़ से सतनाम सवना जसविंदर जस्सी सुमन अंशदीप सवना तमन्ना हरमन बेबी जया और परमवीर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारनी सूरज ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहनकर राही सरिता गवहनकर सिद्धांत प्रिंस, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवहनकर वैशाली श्वेता कुमारी ध्वनि गवहनकर, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्से गगन सोनी जैस्मिन और रेखा, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा, हकीकतपुरा मऊनाथ उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी रितेश कृष्णा पीहू स्वर्णकार और इनका पूरा परिवार, कवाई सालपुरा जिला 12 से सतीश श्रीवास्तव प्रेमलता श्रीवास्तव हिमानी हर्षिता अभिषेक श्रीवास्तव, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू पंकज साहू तिरुपति और सरोजनी, बलौदा बाजार अर्जुनी से आरानु साहू और पूजा और उमेश साहू, गांव कैरों जिला तरन

तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी आकाशदीप अनहद और गुरशब्द। मसीता डब्बाली से दर्शन लौट सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लौट, निहारिका और सारिका। मंडी गोलूवाला से ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। चाहलकला पंजाब से अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर अम्बा चाहल। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक और शोभा नायक। छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश साबेर पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और सहारनपुर से अनवर साबरी, सन्नो साबरी, इरम और अमन साबरी।

इसी गीत को सुनना चाहा है। गिद्दड़वाहा पंजाब से मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल बेबी हिनाशा, पदमपुर से पवन तनेजा और योगेश तनेजा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर विरक, जयतंग विरक और मीका विरक, बौड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभ्य, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश साहू ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ समय बाद 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत आप सुनेंगे 12:30 पर। 12:50 पर कार्यक्रम होगा खेत खलिहान, जानकारी का विषय रहेगा कीटनाशक छिड़काव में सावधानियां। दिन में 1 बजे आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। घर आंगन ये कार्यक्रम होगा 1:05 पर। आज इसमें चर्चा के विषय रहेंगे शौर्य और बलिदान, स्वतंत्रता का सम्मान, भविष्य को प्रोत्साहन, आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं की भूमिका और रंगीलो राजस्थान। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 पर। और संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे सत्यमेव जयते सत्य ही विजय है, सोशल मीडिया से सीखने के अवसर, अंधविश्वास और समाज, संस्कारों का महत्व और आज का इतिहास विषय पर भी चर्चा की जाएगी। संध्या 6:05 पर कार्यक्रम होगा सैराकी। शाम के 7 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा खेतरी बात टांटिया यूनिवर्सिटी के साथ। रात के 8 बजे आप सुनेंगे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। स्पोर्ट्स कैन रात के 8:30 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और अंग्रेजी में समाचार रात के 9 बजे, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात के 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। मिट्टी दी खुशबू पंजाबी साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुनेंगे रात के 9:30 पर। रात 10:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रमों का प्रसारण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:05 होने वाले हैं। अब कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुने, मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

आइए श्रोताओं, अब सुने उपकार फिल्म का गीत, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने। रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है सरफरोश।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुने संतोष आनंद का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज महेंद्र कपूर की, और फिल्म का नाम है क्रांति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार थे जगजीत सिंह। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:50 होने वाले हैं। अब कार्यक्रम होगा खेत खलिहान। आज जानकारी का विषय है उत्पादकता वृद्धि की मूल मंत्र।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए।

0: किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आपां किसानी करा और पूरे साल आपां मेहनत करा, बिंगे बाद में कई बिरियां बहुत सा किसान भाइयों मन में आवे कि जीती आपां मेहनत करिए बीती आपां उत्पादन जी को है वो आपां ने मिलियो को नहीं। बिंगो कारण के है इन पर अगर आपां विचार करा तो ईसा मूल मंत्र है, छोटी छोटी बातें हैं जकी के ऊपर अगर आपां ध्यान करा तो आपां बढ़िया उत्पादकता ले सका। उत्पादन लेने वास्ते आपां आ छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखा, जियां समय पर आपां बुआई करा इशू हो सी के कै ज़्यादा से ज़्यादा आपां उत्पादन ले सकांगा। बिजाई वास्ते हमेशा प्रमाणित उन्नत बीज बोवा। देखो गयो है कि जिका किसान भाई प्रमाणित और उन्नत बीज लेवे बांगी फसल जी की है 20-25% तक बढ़ गया वे। बीज को हमेशा उपचार करा, जकीन आपां बीज को टीकाकरण भी कह दें ईशू के उसी कि कम खर्चे में फसल जी की है बा निरोग रहेगी और स्वस्थ रहेगी। माटी की जांच हमेशा आपने करवानी चाहिए, सिफारिश के अनुसार आपने संतुलित उर्वरक डालना चाहिए। ईशू उर्वरकों के ऊपर जी को अपनो एड़ो पीस हो जावे वो बचत हो जाएगी और जब बचत होगी तो वह आपने मुनाफा में ही गिनी जाएगी। गर्मी में आप हमेशा गहरी जुताई करनी चाहिए, भारी मिट्टी के अंदर तो विशेष तौर से आप ध्यान रखा कि गहरी जुताई करा और बिना कई दिन छोड़ा बीशू के होगा कि जी की खरपतवार की समस्या रोग कीट को जी को प्रकोप है बीशू आपने निजात मिलेगी, बिंग में कमी देखने में आएगी। सही बीज दर रखा, हमेशा कतार में बुआई करा, कतार शू कतार की जी की दूरी है बिने समुचित रखा ईशू के होसी के पौधे की जी की सही संख्या है और सही दूरी शू अच्छी बढ़वार आपने मिलेगी बीशू आप ज़्यादा उपज ले पावांगा। बिंगो कारण और होगा कि जद दूरी सही होगी तो बिने पूरो पानी मिलेगो, हवा मिलेगी, प्रकाश मिलेगो और पौधों जी को है वो चोखो बढ़वार लेवेगो। जुताई बुआई जद भी आप खेत की करा तो डलानगी आड़ में करा, डलानगी आड़ में जद आप जुताई करांगा तो जिको वर्षा को जल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने जमीन के अंदर जावेगो। जमीन के अंदर जद वर्षा को जल कट्ठो होवेगो तो वो एक तो पानी की पूर्ति करते रहेगो, दूसरो अपनी जमीन के अंदर जिको है नमी बनाए रखेगो जिको अपनी फसल के बढ़वार वास्ते सबसे जरूरी चीज़ है। फसल हमेशा ही बदल बदल के बीजा ईशू के हुए कि कीट रोग को जी को प्रकोप है वो कम हो जाए। एक ही एक तरीके की जब आप फसल बीजा तो बेई सागी कीट बेई सागी रोग अपनी फसल ने कई बार पूरी की पूरी नष्ट कर देवे और किसान ने बहुत बड़े नुकसान को सामना करना पड़े। तो फसल हमेशा आप बदल बदल के बीजा, हमेशा मिलवा फसल करा ईशू फसल का जी का भाव है बिंग माँ भी जी को अपनो जोखिम हुए वो कम हो जाएगो और अलग शू फसल की आपा ने प्राप्ति हो जाएगी। दलनी तिलनी जी की फसलें हैं बंग माँ आपा जिप्सम को प्रयोग जरूर करा ईशू के उसी कि भूमि की जी की ताकत है भूमि की जी की उर्वरा शक्ति है वह बढ़ जाएगी, उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी, तेल को जी को प्रतिशत है बिंगी मात्रा बढ़ेगी। जब आप मंडी के अंदर अपनो उत्पादन लेके जावांगा तो बिंगा भाव जी का है वह गुणवत्ता के आधार पर आपने बढ़िया मिलेगा, तेल की प्रतिशत की मात्रा के जो कि बढ़ गया ही है बिंग आधार पर आपने मुनाफो जी को है वो ज़्यादा हुआ। पानी की जी की समस्या है बाद दिनों दिन आपने सामने आने लग रही है तो बी वास्ते जरूरी है कि आप फवारा पत्ती ड्रिप पाइपलाइन आंगो इस्तेमाल करा ईशू पानी की बचत होगी ही होगी सागे आपनों जी को सिंचित क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। जब पानी को सिंचित क्षेत्र बढ़ेगो तो अपनी पूरे खेत ने पानी मिलने लग जाएगो। अब सरकार जी की है बा आपने पूरी सुविधा देने लग रही है तो चाहे छोटो किसान है चाहे बड़ो किसान है बिना आपके खेत के माँ डिगी बनानी चाहिए। पहला डिगी के अंदर आप पानी जी को है वो आपने संचित करा, संचित करने के बाद में आप जद समय हुए बी समय आप सिंचाई करा। फसल की जी की क्रांतिक अवस्था है बीम पर सिंचाई करनी बहुत ही जरूरी है। कई बार आप देखा कि जी के समय क्रांतिक अवस्था हुए बी समय आप सिंचाई वास्ते अपने कन पानी उपलब्ध को नहीं हुए तो जब डिग्गी होगी तो अपने कन पानी भी उपलब्ध होगा और फवारा पद्धति

ब्रजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से कल स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की अगुवाई करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री लाल किले से प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197, जम्मू कश्मीर के 51, पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में आयोजित तिरंगा रैली में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सादुल शहर उप जिला अस्पताल के नवीन भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद वे अनूपगढ़ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे और बॉर्डर आउटपोस्ट का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री का आज धान मंडी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट, हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़े कार्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि हथकरघा अनुभव केंद्र की भारत के हथकरघा प्रणाली के प्रदर्शन के लिए परिकल्पना की गई है, जहां पारंपरिक ज्ञान को न केवल संरक्षित किया जाता है बल्कि सक्रिय रूप से अभ्यास और अनुभव से आगे बढ़ाया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि उद्घाटन प्रदर्शनी में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में 24 पुरस्कार विजेता बुनकरों के उत्पादों और 30 से अधिक चयनित ब्रांड्स भाग लेंगे। प्रदेश के 22 सरकारी विद्यालयों में भामाशाहों के सहयोग से कराए जाने वाले 34 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में ज्ञान संपर्क पोर्टल पर भामाशाहों की ओर से विद्यालयों में विकास कार्यों के लिए पेश किए गए प्रस्तावों की समीक्षा की गई। राज्य परियोजना निदेशक और समन्वयक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि इन विकास कार्यों से स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार होगा। इनमें भवन निर्माण मरम्मत के साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने संबंधी काम शामिल हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के 3,993 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं, जो 13 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के माध्यम से 252 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती में इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन तथा स्टोर्स सहित तकनीकी विभागों के पद शामिल हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर होगा। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में चित्तौड़गढ़ और माउंट आबू में अच्छी बरसात दर्ज की गई। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जयपुर और 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 98 मिलीमीटर बारिश चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दर्ज की गई। विभाग के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक दो जगहों पर भारी बारिश सकती है। जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में अनेक स्थानों पर तथा बीकानेर और जोधपुर संभाग

0: संभागों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़।

खम्मा गणी, मरी लाडली बहना, लाडो बेटिया, पूजनीय सासू जी और इन स्वाभिमानी लुगाइयाँ और अपनी सुख दुख री साझीदार रेडियो सखी सिलू जी जीरो कालजे री कोरा सू प्यार भरो राम राम सा। लो सा घड़ी री सुइया 1:05 बजा दिया है। खेत खलियान रो मोटो काम ढाणी रा चक्कर, पशुआ रो नीरो पानी और रसोई रो सगलो काम काज निपटार, घर आंगन ने साफ सुथरो कर मारी बहना तैयार है सा और थारी सिल्लू जी जी भी हाजिर है। थारो आपरो चहेतो रेडियो स्टेशन माथे लेर थारा सगला रो कालजे रो टुकड़ो हंसतो खेलतो कार्यक्रम घर आंगन। सची कहवा बहनों, दिन रो ओ 1 मारो और थारो कितनो अनमोल होवे है, जठे बस मैं हूँ और मारी फूटरी फूटरी बहनारी टोली। बहनों आज रो ओ कार्यक्रम ऐतिहासिक रंगारे ताने बाने सु भरियोड़ो है, तो सुनो सा आज आपा बातारी शुरुआत कराला अपनी इन माटी री सबसु मोटी पहचान यानी शौर्य और बलिदान री गाथा सु। आपा जानाला कि इन माटी रे कण कण माए वीरा रो रक्त और माता रो त्याग किया सिंचोड़ो है और बहनों जद शौर्य री बात आवेला तो आपा इन बात ने कहीं भूल सका हाँ कि देश ने आज़ाद करावण वास्ते आज़ादी रे आंदोलन मायने महिलावां रो योगदान भी है। कालीबाई सुलेर नारायणी देवी तक मारी बहना कईयां अंग्रेजा सामी छाती ठोकर खड़ी हुई उन इतिहास ने याद कराला। पण बहनों विचार करो, जक्की आज़ादी आपा ने इन बलिदान सु मिली उन आज़ादी रो मोल समझर स्वतंत्रता रो सम्मान करनो और अपने टाबरा ने प्रोत्साहन देवनो आपनो सबसु मोटो धर्म है। आपा बातचीत कराला कि किया आपा अपने टाबरा ने देश प्रेमी और संस्कारी बना सा और जद टाबर संस्कारी बनेला तो घर माए खुशहाली आवेला, तो आपनो मरुधर आपने आप ही झूम उठेला, बस बठे सु ही आपनो कदम सीधो जावेला अपने रंगीले राजस्थान री रंग बिरंगी संस्कृति तीज त्यौहार घूमर और माटी री सोहनी महक माथे है नी फूटरो स्वाभिमानी तानो बानो। तो चलो मारी लाडली बहना, सबसे पहला आपा सिर झुकावाला अपनी इन मरुधरा री माटी ने और जानाला इन माटी रो शौर्य और बलिदान री अमर कहानी। पण पहला कार्यक्रम री मंगल शुरुआत

आपने माए जोश भरन आलो और थारे और मारो मन पसंद मीठो सो लोकगीत सुन लेवा जके सु थारो मूड एकदम फर्स्ट क्लास हो जासी। सुनो सा ओ शानदार सो गीत।

मासूम मथे गोलियां चला दे और लाडो बेटी अपनी माटी सारू शहीद होगी। और बात करा नारायणी देवी वर्मा री, जिकी आपरे 6 महीने रे छोटे से टाबर ने गोदी रे मायने लेर जेल री काली कोठरी रे मायने बंद होगी। रतन शास्त्री अंजना देवी चौधरी इसी इसी वीरांगना ही सा जिकी गहना पाटा महल और सुख सुविधा छोड़र गांव ढाणिया मायने घूमी, लुगाइया ने जगायो और सत्याग्रह मायने जेल होगी ही। इन दोपहरी माए जद आपा सुकून सु घरे बैठे हानी तो ओ सुकून इन वीरांगनाओं रे त्याग री बदौलत है। आज आपा ने आपनों बेटियां ने आ बात बतावनी चाहिए जाए कि थारी परदादी नानी कितनी स्वाभिमानी और निडर ही। लो सा इन आजादी री वीरांगनाओं माथे 2 लाइन सुनो। घूंघट सु निकलर बनी क्रांति री मसाल सा, घूंघट सु निकलर बनी क्रांति री मसाल सा, मारवाड़ी री बहना ने दिखायो आजादी में कमाल सा। वाह सवा बात सुनर तो कालजो गर्व सु बाग बाग हो गयो है, पर एक विचार करो बहना, जक्की आजादी अपन ने इन वीरांगनाओं री शहादत और त्याग सु मिली है, उन आजादी रो मोल समझनो, उन रो सम्मान करनो और अपने टाबरा ने देश री सेवा वास्ते तैयार करनो आपनो सब सु मोटो धर्म है। तो आपा इन आजादी रो सम्मान किया कर सा और अपने टाबरा ने सही रास्ते माथे किया चलावा ला। इन स्वतंत्रता रो सम्मान भविष्य ने प्रोत्साहन वाले विषय माथे बात कर सा इन आवन वाले छोटे से गीत रे बात।

पहुंचावे तो उन्हें कदी रोको मती, उन्हें प्रोत्साहन देवो सा, उनरी पीठ थपथपाओ। आज री लाडो छोरियां पूरे देश रो नाम रोशन कर रही है। तीजी बात, टाबर ने आपरे झंडे रो, राष्ट्रगान रो और देश री शहादत रो आदर करनो सिखावो। जब टाबर मायने देशभक्ति री भावना होवेली तो बे कदी गलत रास्ते माथे कोनी जावेला। सची कहूँ बहना, जब टाबर संस्कारी बनेला तो घर मायने खुशहाली आवेला, और जब हर घर मायने खुशहाली आवेला तो आपनो राजस्थान झूम उठेला। आज़ादी रो सम्मान करा, टाबरा ने देवा ज्ञान सा, भविष्य संवरे टाबरा रो तो अपनी राजस्थान री बढ़े शान सा। वाह सा वाह, बात तो कालजे री है सा। अब विचार करो बहना, जब घर मायने संस्कारी टाबर होवेला, आज़ादी रो आदर होवेला तो घर घर मायने सुकून भेला। आपनो मरुधर किया रंगा सु भर जावेला, तीज त्यौहार घूमर बाजरी री रोटी पचरंगी साफो और खुशबू खुशियाँ री चारों तरफ फैल जासी। बस इन खुशहाली सु जुड़िया रहो, आपनो अगलो और सबसे चटकदार जिकी माथे पर बात कराला बा है रंगीले राजस्थान री, आपने मरुधर री रंग बिरंगी संस्कृति री, लोक कला री और माटी री सोहनी महक माथे। और ये ऐसा बातें आपा कराला इन छोटे से प्यारे से गीत रे पछे।

वाह सावा, कितो मीठो रसीलो और मन माए उमंग भरन आलो गीत हो सा। इन गीत री तान सुनर तो मारो जीव तो कते नाचन लाग्यो हो सा। और आपनो राजस्थान तो है ही तो प्यारो कि जित्ती बिंगी जय जय करा बीती ही कम है। चलो मारी लाडली बहना, अब आ जाओ पाछी अपनी उन बात माता है जिकी थारी और मारी सबसे मोटी पहचान है। अरे बहनो, सच्ची कहूँ तो दुनिया रे मायने कठे भी घूम आओ, पण जको रंग जिकी मिठास आपने इन राजस्थान रे माय है नी, वह पूरी दुनिया में कठी नहीं मिला है। राजस्थान रे माय ने धोरा तावड़ो और पानी कम होने रे बाद भी आपने अठहरा लोग दिल रा अमीर है। अठे तो धोरा रे माय ने भी रंग घोल देवन वाली कसूती कला है। इन वास्ते ही तो इन्हें रंगीलो राजस्थान कहवे है। चलो आज थारी आज शिलू जी जी थाने आपने रंगीले राजस्थान री अनमोल रंगारी याद दिलावे है। पहलो रंग है पचरंगी लहरियो और घूमर। बहनों सावन री या सुहानी रीत तो देखो सा, जद मारी बहना पचरंगी लहरिया साड़ी और पोमचो पैर हाथारे मायने हरी हरी कांचरी चूड़ी खनकवामती आवे और पगारे मायने पायलिया बाजे और आंगणे रे मायने घूमर घालैनी सा, तो कोई अप्सरा सु कम नहीं लागे। अठेरो ओ घूमर सिर्फ नाच कोनी सा और तो अपनी माटी रो सुकून देवन आलो स्वाभिमान है और इतनी मीठी अठहरी बोली है। बड़ो सावन रो महीनो बादल बारिश और राजस्थान रे मायने एक चीज बिना तो ओ मौसम अधूरो ही लागे है। पकोड़ा नहीं लहरियो, आज एक बहुत ही फूटरो सो लहरियो गीत देखो सुनो और इन्हें समझो।

देवाश्री बहुत बहुत बधाई। और सागर काल है अपनी तीज रो त्योहार भी। चांदड़लिया थारे चांदणे पिया परदेसी री मनवार, चांदड़लिया थारे चांदणे पिया परदेसी री मनवार, घणे हेदसू करे सिरावल थाने निरख निरख घरनार, चूड़ा चूंदड़ी अमर सुहागण राखे सदा थारा किरदार, चूड़ा चूंदनी अमर सुहागन राखे सदा थारा किरदार, सदा रही जे सतवंती इन भारत भूमि री लक्ष्मी नार, सदा रही जे सतवंती इन भारत भूमि री लक्ष्मी नार। हैप्पी तीज सगला ने तीजरी बहुत बहुत बधाई। और ये बधाई सारू थाने सुनावा एक चौकसो तीजरो गीत।

मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी जानकारी और प्यारा प्यारा गीता रे सागे ओ कार्यक्रम प्रस्तुत करियो थारी आपरी बैंड सिल्लू जी जी। अब हूँ चालू, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से पहले अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India

0: उन्होंने निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस

0: साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई सौ जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
4: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्र

0: की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज 36

0: मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
1: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई हैं और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंग नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुने। अनाड़ी फिल्म से आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

आइए श्रोताओ अब सुने हमराही फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से फिल्म संगीत। आइए सुने आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है दर्पण।

आइए श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत सुने मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म का नाम है संगम। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

आइए श्रोताओं अब सुनें पारस मणि फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत लिखा है असद भोपाली ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए श्रोताओ, फिल्म संगीत के आखिर में सुने लता मंगेशकर के स्वर में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। केवल न्यूज ऑन AIR ऐप पर और FM प्रसारण चालू रहेंगे। मीडियम वेव पर रखरखाव के चलते प्रसारण बंद रहेंगे।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आज़ादी की तकरीबात में कौम की क़यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने उन लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थीं। भारत ने कोलंबिया में आए तबाहकुन जलजले के बाद वहां जारी बाज़ाबादकारी के कामों में तआवुन की गरज से 20 मैट्रिक टन इमदादी सामान की पहली खेप रवाना की है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन दरामदाद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है। खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वीं यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेज़ी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेज़ी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतल्लिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। कल पूरे मुल्क में

पूरब और पश्चिम इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार थी हिंदी और मौसीकार कल्याण जी आनंद जी। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामईन के लिए शहीद फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

0: लेकिन सहर की गोद में भीगे भीगे से खुनक पुरवायों का लम्स पाकर करवटों अंगड़ाइयों के टूट कर काफू होते दायरों में बेमहाबा फैलती बढ़ती एक कैसी रोशनी का आंख को इरफान हुआ है। ये सभी मामूल होकर भी मुझे कुछ और सा लगता है क्यों? सुबह सादिक का ये वक्फा इस कदर धुंधला है क्यों?
1: सो गए थे रात तुम जो गुफ्तगू करते हुए, इर्तका जबरे मशीयत दिलशिकन दौरे गुलामी जंग आजादी हुसूले रूह आजादी फराइज जज्बे ज़ौक़े अमल और कुछ ऐसे ही मौजूआत पर सो गए थे रात तुम जो गुफ्तगू करते हुए, ये नया एहसास है उस रात की रुदात का रद्दे अमल जो तुम्हारे जहन और आसाब पर है वाकई छाया हुआ। कल है 15 अगस्त, कल है 15 अगस्त जी, जिसकी खातिर खैर मकदम की सबुक परछाइयां ले रही है सुबह के माहौल में अंगड़ाइयां। तुमने रखा है जो तकिए के तले वो ट्रांजिस्टर लगाओ और वो नगमे सुनो, हुर्रियत और जोश के नगमे सुनो, इब्तदाए जंग आजादी से लेकर इक्तसाबे हक आजादी तलक जहद की सारी दास्तां कहते हुए गाने वालों की रगों से फूट कर निकले हुए, सुनने वालों की रगों में डूब कर बहते हुए।

Nitikasaro

जैसे किसी ने कार की बाहे पग पग में सवार।

जज्बाती रिश्ते में बदलने की कोशिश की। जब तिरंगा घर घर पहुंचा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मुल्क के हर खानदान का रिश्ता कौमी फख्र से मजीद गहरा हो गया हो। ये मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजबूत करने के साथ साथ लोगों को हिंदुस्तानी कौमी परचम की तारीख, इसकी अहमियत और इसकी अजमत से वाकिफ कराने का भी जरिया बनी है। इस साल हर घर तिरंगा मुहिम का इनकाद खास तौर पर अहम है। ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर वक्फ की गई है। मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम में मादरे वतन के तई मोहब्बत, कुर्बानी और ईसार का जो जज्बा पोशीदा है उसे इस बार हर घर तिरंगा मुहिम के साथ जोड़ा गया है। मुहिम के पांचवें एडिशन के तहत मुल्क भर में कई रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इनमें तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, तिरंगा कॉन्सर्ट्स और वंदे मातरम की इज्तमाई गायकी खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। गुज़श्ता 4 बरसों में हर घर तिरंगा एक सरकारी पहल से आगे बढ़कर एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस मुहिम को पूरे जोशो खरोश और गर्मजोशी के साथ अपनाया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्रामों में अवाम की शिरकत ने इस तहरीक को मजीद वसी और मुअस्सर बनाया है। आज तिरंगा सिर्फ सरकारी इमारतों या अवामी तकरीबात तक महदूद नहीं है, वो मुल्क के करोड़ों घरों तक पहुंच चुका है और हर घर में लहराता हुआ तिरंगा मुल्क के तई एहतराम, इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दे रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक और मुनफरिद पहल शुरू की गई है, सूर्यपथ तिरंगा। मरकजी वजीर सकाफत और सियाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुज़श्ता हफ्ते नई दिल्ली में इस पहल का ऐलान किया। सूर्यपथ तिरंगा को एक अलामती आलमी तिरंगा रिले के तौर पर पेश किया गया है। इसका रास्ता सूरज के तुलू होने की समत की पैरवी करेगा। हिंदुस्तान के मशरकी सिरे पर वाके उस हिंदुस्तानी मिशन या पोस्ट से जहां सबसे पहले सूरज तुलू होता है, कौमी परचम को बाकायदा तौर पर लहराया जाएगा। इसके बाद ये सिलसिला मशरक से मगरिब की जानिब आगे बढ़ेगा। गोया तिरंगा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज की रोशनी के साथ साथ सफर कर रहा हो। इस पहल के जरिए दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानी मिशनों और बैरूनी मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी को भी यौमे आजादी की तकरीबात से जोड़ा जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के अवाम से हर घर तिरंगा मुहिम में पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हिंदुस्तान के फख्र की अलामत है और हर शहरी के लिए मुल्क की तामीर में अपना बेहतरीन किरदार अदा करने की मुसलसल तहरीक है। वजीर आजम ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम वंदे मातरम के 150वें साल के नाम वक्फ है। हिंदुस्तान का कौमी परचम सिर्फ एक परचम नहीं है, ये हिंदुस्तान की आजादी की कहानी है, ये हमारे जाबाजों की कुर्बानियों की याद है, ये मुल्क के फख्र, इत्तेहाद और सालमियत की अलामत है। जाफरानी रंग हिम्मत और कुर्बानी के जज्बे का पैगाम देता है। सफेद रंग अमन और सच्चाई की अलामत है। सब्ज रंग खुशहाली और तरक्की की उम्मीद को जाहिर करता है और इन तीनों रंगों के दरमियान मौजूद अशोक चक्र हमें मुसलसल आगे बढ़ते रहने की तहरीक देता है। हिंदुस्तानी कौमी परचम जिसे हम प्यार से तिरंगा कहते हैं, आवाम के जज्बात और कौमी शऊर में एक खास मुकाम रखता है। कौमी परचम की मौजूदा शक्ल मशहूर मुजाहिदे आजादी, माहिरे तालीम और कई जबानों के आलिम पिंगली वेंकैया ने डिजाइन की थी। पिंगली वेंकैया की पैदाइश 2 अगस्त सन 1876 को हुई थी और उनका इंतकाल 4 जुलाई सन 1963 को हुआ। उन्होंने 1 अप्रैल सन 1921 को विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मुलाकात के दौरान कौमी

परचम का डिजाइन पेश किया था। इसके बाद 22 जुलाई सन 1947 को दस्तूर साज असेंबली के इजलास में हिंदुस्तान के कौमी परचम को इसकी मौजूदा शक्ल में इख्तियार किया गया। यौम आजादी और यौम जमहूरिया जैसे कौमी त्योहारों पर तिरंगे को पूरे एहतराम और वकार के साथ लहराया जाता है। आज हर घर तिरंगा सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये उस जज्बे का जश्न है जो हमें अलग अलग जबानों, सकाफतों और रवायात के बावजूद एक कौम के तौर पर जोड़ता है। जब किसी घर की छत पर तिरंगा लहराता है तो वहां सिर्फ एक परचम नहीं लहराता, वहां हिंदुस्तान का फख्र लहराता है। आइए इस यौम आजादी पर तिरंगे को अपने घर लाएं, इसकी अजमत को समझें और मुल्क की तामीर में अपने किरदार का अहद करें, क्योंकि तिरंगा हमारा फख्र है, तिरंगा हमारी पहचान है और तिरंगा ही हमारे मुल्क के तई हमारे एहतराम और अहद की शान है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के लिए अटूट मोहब्बत और फख्र।

ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है।

देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक

गलियां वाला बाग ये देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूक के दंदन एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, यहाँ लगा दी।

और सामने जब सुनी मोहम्मद रफ़ी खान मस्तान और साथियों को, फिल्म है शहीद, नगमा निगार हसन जयपुरी, मौसीकार गुलाम हैदर।

मन्ना डे मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आप सुन रहे थे। फिल्म थी प्रेम पुजारी। इस नगमे को मौसीकी सजाया था SD बर्मन ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश फूल बने अंगारे, फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मौसीकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों की सेवा में आज नमस्कार। जसवीर सिंह की तरफ से दोस्तों युववाणी कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं और सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी सुनने वालों को आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों कार्यक्रम शुरू करें तो हम जैसे कि हमने आपसे बात की कि स्वतंत्रता दिवस जो 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं कल 15 अगस्त को, और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। और दोस्तों ये जो तारीख है इस तारीख को बोलने पर बच्चे बच्चे के जुबां पर अपने आप स्वतः ही भारत की वो तस्वीर उभर आती है जहन में, जहाँ हमारे आज के दिन और इस स्वतंत्रता दिवस पर न जाने कितने ही शहीदों ने अपनी प्राणों की कुर्बानी दी और भारत को उस आज़ादी का जो सहरा बांधा, वो सब उसके जो पात्र हैं, वो जो शहीद हैं, उनको हमारा शत शत नमन। और युवा साथियों बात करते हैं कि बात सत्यमेव जयते की, सत्य पर जीत की, विजय की, तो दोस्तों सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य की सदैव ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवानगरी लिपिक में अंकित है। सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल पर लाने और उसका प्रचार करने में पंडित मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण का भूमिका थी, और ये महत्वपूर्ण भूमिका पंडित मदन मोहन मालवीय ने निभाई। श्रोताओं वेदांत और दर्शन ग्रंथों में जगह जगह सत असत का प्रयोग हुआ है। सत शब्द उसके लिए प्रयुक्त हुआ है जो सृष्टि का मूल तत्व है, सदा है, जो परिवर्तित नहीं होता, जो निश्चित है। इस सत तत्व को ब्रह्मा और परमात्मा कहा गया है। और यो साथियों ये सच भी है कि जो सत्य है वो सदैव अटल है। और दोस्तों हमेशा कभी भी आप अपने आप पर आप अनुभव कीजिए कि यदि आपने किसी से किसी बात को झूठ बोला है तो आपको निश्चित रूप से उस झूठ को, बोले गए झूठ को, जिस व्यक्ति के सामने बोला गया और क्या झूठ बोला गया वो आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि यदि आपने दूसरी मीटिंग के अंदर या तीसरी मीटिंग के अंदर उसी झूठ को जब आपने बोला और उसके अंदर क्या बोला उसको आपने बदल दिए, उसके शब्द बदल दिए, तो निश्चित रूप से आप पकड़े जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए दोस्तों जो सत्य है वो अटल है, उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो घटना सत्य में आपके साथ जो व्यतीत हुई है उसे अगर आप कह देते हैं और सत बात कह देते हैं, सच बात कह

रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे की वैसी कही जाती है। हाँ, शब्दों की आगे पीछे हो सकते हैं मगर वो शब्द बदले नहीं जा सकते। मगर झूठ एक ऐसा है जिसमें शब्द एक दूसरे के साथ बोलने पर उनको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस व्यक्ति के सामने क्या शब्द और क्या बात कही गई है जो झूठी थी। इसलिए दोस्तों ये बात बिल्कुल है कि सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही वह देवयान मार्ग, दिव्य मार्ग विस्तृत होता है, जिसमें होकर पूर्ण काम, जिनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हों, ऋषि उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां सत्य का परम निधान खजाना है। और दोस्तों ये सभी चीज़ें हमारे ग्रंथों के अंदर भी लिखी हुई हैं, जो कि हमें हमारे ग्रंथ ये बताते हैं कि सत्यमेव जयते।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: युवा साथियों, अभी हम बात कर रहे थे सत्यमेव जयते की, और दोस्तों सत्यमेव जयते एक प्रसिद्ध संस्कृत और सूक्ति है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। और ये बताता है कि चाहे अंधकार कितना भी घना हो, झूठ के पाँव कितने भी मजबूत हों और असत्य का साम्राज्य कितना भी विशाल दिखे, अंततः पराजय मिथ्या की ही होती है और विजय का मुकुट सत्य के मस्तक पर ही सजता है।

सत्य उसी सूर्य के समान है जिसे मेघ क्षण भर के लिए ढक सकते हैं पर जिसका अस्तित्व और प्रकाश अटल है। झूठ उस ओस की बूंद जैसा है जो सूर्योदय होते ही लुप्त हो जाती है। और दोस्तों, ये जो सत्यमेव जयते और इस सूक्ति का और इस अर्थ भाव की हम बात करें तो मुंडक उपनिदेश का ये मंत्र भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रमाण है जिसे स्वतंत्र भारत ने अपने राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते के रूप में अपनाया। यह श्लोक सत्य को केवल एक नैतिक गुण नहीं बल्कि उसे परम लक्ष्य तक पहुंचने वाली मार्ग के रूप में परिभाषित करता है। डांडी मार्च की वर्षगांठ पर इसे साझा करना इस बात का प्रतीक है कि कैसे हमारे पूजनीय बापू महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से उस उपनिषदीय सत्य को जन आंदोलन की शक्ति बनाया। और दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अंतिम विजय और आत्म साक्षात्कार केवल सत्यनिष्ठ होने से ही संभव है। खैर दोस्तों, हम इस बात पर भी बिल्कुल अड़िल हैं कि सत्य की जीत होती है। और दोस्तों, अब हम बात अगर हम करें तो निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया अपने आप में बहुत कुछ हमें सिखाता है। इसको इस्तेमाल हमें करना आ जाए तो निश्चित रूप से हम इससे अपना दिनचर्या, हमारी जो बातें हैं, जो हमारी भाषा है, जो हमारी ज़रूरत है, उसको हम अपनी पूरी कर सकते हैं। और युवाओं में जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी रूप से प्रचलित है और मानसिक स्वास्थ्य और इसके प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर भी करता है। जैसे युवा की ऑनलाइन जो वो अधिक जुड़े रहते हैं जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मगर दोस्तों, आखिरकार अगर हम बात करें तो जो सोशल मीडिया है उसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम यदि किसी घर पर कोई भी विषय पर अगर कोई विद्यार्थी है कुछ पढ़ रहा है और उसको किसी टॉपिक पर अपनी बात को समझने में और उस बात को समझने में उसको कहीं कठिनाई आती है तो निश्चित रूप से उसके पास सोशल मीडिया है और उस पॉइंट को, उस टॉपिक को जब वह सोशल मीडिया पर डालता है तो निश्चित रूप से उसके पास वो सारी बातें, वो टॉपिक की जो जितनी भी सरल भाषा के अंदर उसको समझा सकते हैं उस टॉपिक के माध्यम से वो युवा साथी, वो विद्यार्थी उस टॉपिक को क्लियर कर लेता है। और दोस्तों, सोशल मीडिया हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और दोस्तों, इसलिए हम ये कह देते हैं कि कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे विद्यार्थी या जो पढ़ने वाले जो युवा साथी हैं वो उन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी क्लासेस अटेंड करके प्रतियोगी परीक्षा है चाहे वो उनकी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करते हैं। इसलिए हमेशा सोशल मीडिया का सही अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सोशल मीडिया आपका एक हमदर्द और एक साथी होगा। और यदि हम इसी को हम गलत रूप में इस्तेमाल करने लग जाएं तो निश्चित रूप से दोस्तों, जो जैसा सुनेगा, जैसा देखेगा, वो निश्चित रूप से उसका मन भी और उसके दिमाग भी, उसके विचार, उसके हाव भाव भी वैसे होते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया का जो सीखने के जो अवसर है उसे हमें छोड़ने नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से जो हमारी जो साइट्स हैं जिसको हम पढ़ने में प्रयोग में लेते हैं या कुछ सीखने के प्रयोग में लेते हैं, किसी चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको जहाँ पर हम सीखने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे जाकर उस टॉपिक का नाम लिखिए और निश्चित रूप से आपको वो डिटेल के अंदर एक विस्तृत रूप से आपको वो पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करता है। और तो जब तो दोस्तों, अब तो AI का ज़माना है और तो AI ज़माने के अंदर ये जो बातें हैं वो बहुत सरल और संभव भाव से ये सब चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल कीजिए। खैर दोस्तों, बातचीत होती रहेगी, गीत हम आपको सुनवा देते हैं।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी हाँ युवा दोस्तों, बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया से सीखने के जो अवसर है वो निश्चित रूप से हमारी सोच समझ पर निर्भर करते हैं कि आप सोशल मीडिया से क्या सीखना चाहते हैं। और दोस्तों, जबकि भारतीय समाज पर सोशल मीडिया पारंपरिक मीडिया के एकाधिकार की चुनौती देता है, क्योंकि ये नागरिकों को वास्तविक समय में समाचार और विचार साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। और दोस्तों, सरकारें चाहे कुछ भी, राजनेता या प्रत्यक्ष सार्वजनिक जुड़ाव, नीति घोषणाएं, शिकायत निवारण, राजनीतिक प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसे कि भारत में चुनाव होते हैं उस वक्त भी। और दोस्तों, और वैसे सोशल मीडिया से जो विभिन्न जगहों पर जो सरकारी सुविधाएं हैं जिनके लिए हमें ज्ञान नहीं है, वो हमें कहीं ना कहीं उनसे प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो सोशल मीडिया हमें सिखाने का काम करती है। और इस तरह से दोस्तों, सोशल मीडिया पर हम अपने जो भी अपने कह लीजिए कि ज़रूरतें हैं उससे हम सीख सकते हैं। और सीखने के लिए दोस्तों कहते हैं कि उम्र का कोई भी तकाजा नहीं होता, कभी भी किसी वक्त कहीं भी सीखा जा सकता है। सीखने के लिए आदमी अपने आप को तैयार रखे, और तैयार इसलिए भी रखे क्योंकि दोस्तों हम और आप सभी आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बातचीत कर रहे हैं। गीत और संगीत का ये जो दौर है वो निश्चित रूप से इसी तरह से चलता रहेगा, बस आप प्रोग्राम में हमारा साथ देते चलिए और हम आपको गीत सुनवाते हैं, बातचीत करते हैं, आज की बात की विषय पर बातचीत होती है। और दोस्तों, इसी तरह से गीतों को भी हम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं, तो ये गीत सुनते हैं।

0: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: जी हाँ युवा साथियों, बात सोशल मीडिया के सीखने के अवसरों की थी और जहाँ हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे बीच कुछ लोग अंधविश्वास पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन अंधविश्वासों की वजह से जो हमारा समाज है, जो हमारी तरक्की है, वो निश्चित रूप से आगे हम बढ़ नहीं पाते, हमारी तरक्की नहीं हो पाती। कारण क्या कि हम दोस्तों उस अंधविश्वास को विश्वास कर बैठते हैं। बस इतनी सी ही समय चूक या नेगेटिविटी मन में आने से निश्चित रूप से आप जो अवसर आपके सामने पड़ा होता है या अवसर आपके सामने होता है उसे भुनाने का अवसर होता है, तो वो उसको आप निश्चित रूप से ब्रेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और दोस्तों हमारे समाज में कई तरह के अंधविश्वासों की बड़ी गहरी जड़ें हैं। युवा साथियों, पुराने समय में लोग बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कई वैज्ञानिक तथ्यों को किसी प्रथा रिवाज या नियम के रूप में ढालकर आम लोगों के जीवन में शामिल कर दिया जाता था ताकि वो संजीदगी से उसका पालन कर सके। समय के साथ ये नियम अंधविश्वास में बदल गए। आज 21वीं सदी में इनमें से बहुत सारी रूढ़ियों और रिवाजों की ज़रूरत नहीं है या इन्हें वैज्ञानिक रूप से गलत साबित कर दिया गया है, और उसके बावजूद भी युवा साथियों बहुत सारे लोग इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाए। वैसे तो सारे अंधविश्वास गलत है, लेकिन अगर कोई अंधविश्वास सेहत से जुड़ा हो तो ये

बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अंधविश्वास और विज्ञान दोनों के बीच के अंतर को समझना आज के समय में बेहद जरूरी है, और ये बहुत आसान भी है दोस्तों, क्योंकि आज के समय अगर हम विज्ञान को समझता है तो हमारे पास एक सोशल मीडिया या कह दीजिए इंटरनेट जो हमारे हाथ में है, उसके माध्यम से हम विज्ञान को समझ सकते हैं। इसलिए युवा साथियों, अंधविश्वास और विज्ञान दोनों के बीच के अंतर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे अंधविश्वास और

फैले हुए अंधविश्वास को उजागर करके तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों आदि से बात करकर रिसर्च स्टडीज में बताई जाती है, जानकारी साझा की जाती है। इसके पीछे विज्ञान को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि लोग सच और मिथ्या के फर्क को पहचान सकें। और दोस्तों, ये जो संघर्ष है हमारे बीच चलता रहता है, और ये जो अंधविश्वास है हमारे समाज के लिए एक कलंक का रूप धारण कर लेता है। जहाँ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, वहीं कहीं ना कहीं हम जब अंधविश्वास पर विश्वास कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें पीछे की तरफ धकेल देता है। जो विकास, जो जरूरी जानकारी, जो जरूरी अवसर है, वो हमसे खो जाते हैं। और दोस्तों, ये जो अंधविश्वास है, इन विश्वासों को, अंधविश्वासों को अगर यदि हम धीरे धीरे, जैसे कि आपको हमने पहले बताया कि विज्ञान पर आधारित हम कसौटी को विज्ञान मानकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से इन वैज्ञानिक जो तथ्य हैं उससे हम अंधविश्वास को तोड़ सकते हैं। और जो सकारात्मक सोच है वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास को तोड़ती है। और दोस्तों, ये बात भी है कि अब गीत आपको सुनवा देते हैं।

जी युवा दोस्तों, बात थी अंधविश्वास की। और दोस्तों, ये जो अंधविश्वास है, इससे निश्चित रूप से हमारी सोच पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि छोटा सा चमत्कार देखने के बाद हम ये मान लेते हैं कि ये अंधविश्वास हो जाता है, कि ये छोटी सी ट्रिक, जादुई ट्रिक, हम उसको विश्वास करके उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपने उसको अपनी एक धारणा बना लेते हैं। और दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि आज भी कई लोग थोड़ी सी ट्रिक जादू दिखा देते हैं और उसको चमत्कार मानने लगते हैं। इसी अंधविश्वास में गहरी जड़ें जो है हमारे समाज में जमा लेती है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसे समाज से विरोध झेलना पड़ता है। हमारे समाज में ये लोग कहते हैं, अक्सर सुना जाता है कि क्या कहेंगे लोग, का ये डर इतना बढ़ चुका है कि लोग तर्क करना भूल जाते हैं। और दोस्तों, इसलिए धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर, हमारे और हमारे बीच ये जो अंधविश्वास का जो एक चक्रव्यूह है, वो इतनी गहरी और इतनी गहराई के साथ हमारे आप को पकड़ चुका है। और निश्चित रूप से दोस्तों, यूं भी हम कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन अंधविश्वासों को जानते नहीं हैं, क्योंकि वो पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी, वो भी समझती है कि विज्ञान कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है। और दोस्तों, इसी के सहारे ही हम अपनी बात, अपने विचार, अपने सकारात्मक सोच को आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं ना कहीं हम अगर ऐसा करेंगे तो समाज या लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे, ये जो धारणा है, धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करती रहती है और जो हमारे विकास और हमारे सामने अवसर हैं, सुअवसर हैं, उसे हम खो देते हैं। खैर दोस्तों, बातचीत हम और भी करते हैं, मगर उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

जी हाँ युवा साथियों, बात थी कि हम किस तरह से अंधविश्वास में रहकर हम अपने आप को एक नेगेटिव सोच के अंदर अपने आप को बंद कर लेती हैं। और दोस्तों, उसी बात को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो संस्कारों का पालन न केवल व्यक्ति के जीवन को दिशा देता है, बल्कि समाज पे भी सकारात्मक बदलाव लाता है।

ईमानदारी, करुणा, सहनशीलता, न्यायप्रियता, समर्पण, आदर और सम्मान जैसे संस्कार हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाते हैं। युवा साथियों, समाज में सामंजस्य और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। उदाहरणों के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि संस्कारों का पालन एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, रिश्तों को मजबूत करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का पालन करना चाहिए ताकि हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकें बल्कि समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि दोस्तों, प्राचीन भारतीय का जो जीवन अनेक प्रकार के संस्कारों से बंधा हुआ था। संस्कार से मानव जीवन सुसंगठित और अनुशासित रहता है। ये संस्कार ही थे जिसके द्वारा वह अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताता है। इसे सामाजिक जीवन में किसी प्रकार की कोई उछलता और नहीं फैलती। ये संस्कार जन्म से लेकर मृत्युपर्यंत तक मनुष्य के साथ धार्मिक कृतियों के रूप में चलते रहते हैं जिनका उद्देश्य मानव मन को शुद्ध रखना और भांति भांति की बुराइयों से बचा के रखना। और अगर हम बात करें दोस्तों संस्कार शब्द की, उसकी परिभाषा की और अर्थ की, आत्म का परिमार्जन करना, परंतु विद्वानों ने इस शब्द के अनेक अर्थ बताए हैं। आत्मा का प्रजनन करना, अपने को समझना, पवित्र करने के लिए अनुष्ठान करना इत्यादि इत्यादि। खैर दोस्तों, बात वही है कि जब हम संस्कारित रूप से हम अपने आप को एक अच्छे जो स्वभाव के साथ अच्छे वातावरण में अपने आप को हम सोच बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बीच जो हो एक संस्कार जो एक जन्म लेते हैं, विचार जन्म लेते हैं, वो सकारात्मक रूप से हमारे पास रहते हैं और उन्हीं सकारात्मक रूप से उन संस्कारों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। और बढ़ते हुए दोस्तों हम दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। जब हमारे संस्कार अच्छे हों तो हमें कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छे संस्कार मेंटेन किए हैं, आपके माँ बाप ने आपको अच्छा संस्कार दिए हैं। और इसी तरह से अगर यदि इसकी विपरीत यदि हम कुछ गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, तो निश्चित रूप से इस पर हम अपने संस्कारों पर उंगली उठा लेते हैं। खैर दोस्तों, बातचीत और भी, मगर उससे पहले सुने ये गीत।

जी हाँ युवा साथियों, अभी आपने ये गीत सुना और बात हम करें आज 14 अगस्त की और आज की जो इतिहास है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, आज के दिन यानी 14 अगस्त 1248 में जर्मनी ने कोलान कैथेड्रल का आग से नष्ट होने का पुनर्निर्माण शुरू किया। अमेरिका ने आज के दिन 1805 में एक ट्यूनिस के बीच में एक शांति संधि का हस्ताक्षर किया और आज के दिन यानी 14 अगस्त 1848 में अमेरिका ने ऑरेगन क्षेत्र की स्थापना की थी और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1862 में की गई थी। और दोस्तों, इस तरह से आज अगस्त की हम बात करें तो 14 अगस्त के दिन हम ये जो भारत का विभाजन 1947 को हुआ और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना, और आज के दिन हम 14 अगस्त की हम बात करें तो 14 अगस्त को जो हमारे जो आज व्यस्तित जो विशिष्ट व्यक्ति जो जिन्होंने जन्म लिया उनकी हम बात करते हैं। फिल्म अभिनेता जॉनी लीवर का आज का उनका जन्मदिन, और भारतीय क्रिकेट प्रवीण डांबरे का आज का जन्मदिन, और हम बात करें दोस्तों जिन्होंने आज के दिन अलविदा कहा हमारे इस पूरी दुनिया को, तो उसमें सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं तो कुश्ती खिलाड़ी खाशवा जाधव के निधन 14 अगस्त 1984 को हुआ था दोस्तों। और प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का 14 अगस्त 2011 को निधन हुआ था। खैर दोस्तों, ये था आज का इतिहास यानी 14 अगस्त का इतिहास, और इन इतिहासों के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं, हम आपके जीके तक पहुंचते हैं, जनरल नॉलेज तक पहुंचते हैं, और आज भी हम इसी तरह से आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। और आइए

जी हाँ युवा साथियों, आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दें उससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी सुनने वालों को आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। अब अपने दोस्त जसवीर सिंह को दीजिए आज्ञा युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6 बज चुके हैं, आइए सुने कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सरायकी की कड़ी संख्या 7। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। समय एक बार फिर से नोट कीजिए, आज संध्या 7 बजे, जिसे हम अपने आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम खेतारी बात्या टांटिया यूनिवर्सिटी रैसात, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत रात्रि 8 बजे, सुगम संगीत रात्रि 9:15 पर और पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोतो, कल के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, कल प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम का संबोधन का सीधा प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे सवेरे 7:10 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे सवेरे 6:10 पर, चिंतन आप सुनेंगे 6:45 पर, विषय रहेगा समर्पण और वाचक स्वर स्वामी अशोक भारती के। सुप्रभात कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर, इसमें विषय होंगे जानकारी के स्वतंत्रता दिवस, देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य। सुगम संगीत आप सवेरे 8:45 पर सुनेंगे। मरुमंगल कार्यक्रम में कलाकार होंगे सुजराम भाट सवेरे 9:10 पर। युगल गान आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत सवेरे 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित सवेरे 10 बजे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत सवेरे 11 बजे। और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। सुगम संगीत दोपहर 12:30 पर। 12:50 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में आप जानकारी सुनेंगे नरमे कपास की फसल में कीट नियंत्रण। दिन में 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज और झूला परंपरा, बचपन का 15 अगस्त, तिरंगा लहराना, लड्डू व परेड, किक चाट आइडियाज। फिल्म संगीत दिन में 2:30 पर। उर्दू सर्विस आकाशवाणी दिल्ली से संध्या 3 बजे। युववाणी कार्यक्रम संध्या 5 बजे, इसमें जानकारी के विषय होंगे स्वतंत्रता दिवस, पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के वीर, ग्लोबल वार्मिंग, भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू और आज का इतिहास विषय पर जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संध्या 7 बजे कार्यक्रम किसान वाणी चौपाल संध्या 7:30 पर। और आकाशवाणी जयपुर से रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष समाचार तरंग। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। और रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम पर दिए गए संबोधन के AI आधार पर वॉइस क्लोनिंग संस्कार का प्रसारण। एक बार आप इसे पुनः सुने, आज आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:30 पर, कल आप सुनेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम पर दिए गए संबोधन के AI आधारित वॉइस क्लोनिंग संस्करण का प्रसारण। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोता, आपको पुनः याद दिला दें, कल सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के

नाम संबोधन का सीधा प्रसारण। और आज आप सुनेंगे संध्या 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब आप सरायकी की कड़ी संख्या 7वीं सुनेंगे।

थोक माहिती सामेईन की खिदमत च डीएस संधू दा आदा सामेईन सब को पहलों पेश है साढ़े अज के प्रोग्राम की तफसील। अज के साढ़े प्रोग्राम का आगाज हो से सैं मोहम्मद जुम्मन की आवाज च हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के सूफियाना कलाम नाल। इनको बाद मोहतरमा प्रीतम चावला पेश करे सन अपनी एक कहानी ते प्रोग्राम के आखिर च सैं सलीम इकबाल पेश करे सन सैं बेदल सरहदी की एक गजल। सामिन इतिहाए साढ़े अज के प्रोग्राम की तफसील। अज के प्रोग्राम का आगाज करें दे पया सैं मोहम्मद जुम्मन की आवाज़ च हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के सूफियाना कलाम नाल समात फरमाओ।

0: खुदगर्जी है, परमानंदा सच्चा प्यार का ही नहीं, पवित्रता सच्चाई का ही नहीं। मन दुखी थी गयो, बैठे बैठे उनका वतन दे प्रति, वतन दे कुदरत दे सोने सोने मन दो लुभावन वाले नज़ारियां दे प्रति प्यार उमड़ आया। अपनी अजीब तरह की मस्ती च झूमदे, खेड़ा खुशी बनेंदे भी है, रंग बिरंगे वन सुवन्ने फुल उन्हें अखां दे अगू आख लोते। उनको वो सोने सोने नज़ारे भला याद आ गए। अपने बीते हुए झाड़ियों दो याद करिंदा करिंदा मिठियां मिठियां यादा फिट गया। सुचेंदे सुचेंदे उनको पता नहीं लगा कि वो कित्थ पहुंच गया। अच्छा चेत तेज हवा दे हिग बुले ने उनको हिला दिता तो वो त्रबक गया। उनकी सोचा की लड़ी टुट गई। वो तो अपने वतन वापस बन के अपने मापियों की छात थले रह के उन्होंने प्यार का आनंद माणन वास्ते उबाला थी गया।
1: ਸਾਮੀਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਾਵਲਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਸਾਮੀਨ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ ਸਈ ਬੇਦਲ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜਗੂ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਈ ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सराइकी की कड़ी संख्या 7वीं, मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है।

प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में

प्रधानमंत्री कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में मॉनसून के दौरान मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय राशि जारी करने की घोषणा की। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन अब से कुछ ही देर में 7 बजे आकाशवाणी के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। लाल किले पर होने वाले समारोह की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति रखी गई है। समारोह में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा।

समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2,500 कैडेट्स तथा माय भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को भी लाल किले में होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस कल प्रदेश भर में गौरव और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 80वें स्वाधीनता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह बीकानेर में होगा। वहीं सभी जिला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। समारोह में राजस्थान पुलिस और कारागार विभाग के चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर होने वाले समारोह में राज्य के मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में होने वाले समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी उदयपुर और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सवाईमाधोपुर में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह विभिन्न जिलों में अन्य मंत्री तिरंगा फहराएंगे। शेष रहे जिलों में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जयपुर स्थित लोकभवन में झंडारोहण करेंगे। इस अवसर पर वे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। इस बीच स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने सभी से भाईचारा बनाए रखने और देश प्रदेश की उन्नति के लिए भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि ये दिन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर प्रदेश में आज कई आयोजन हुए। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर विभाजन विभीषिका पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है। उधर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें पैनलों के माध्यम से 1947 में हुए विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा, विस्थापन और संघर्ष को दर्शाया गया है। 12वीं संगोष्ठी का आयोजन कर विभाजन के दौरान प्राण गंवाने वाले लोगों का स्मरण किया गया। इस बीच आज झुंझुनू, डीग और नागौर सहित विभिन्न स्थानों पर तिरंगा रैली निकाली गई और वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। डीग में तिरंगा यात्रा पर स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्रीगंगानगर के सादुल शहर में तिरंगा यात्रा में भाग लिया।

0: केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। वहीं गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिसकर्मी और अग्निशमन सेवा कर्मी शामिल है। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए दिए जाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ और सादुलशहर दौरे पर रहे। अनूपगढ़ की धान मंडी में आयोजित जनसभा से श्री शर्मा ने 389 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने प्रदेश में मॉनसून में मरम्मत कार्यों के लिए राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नगर निगमों को 10-10 करोड़ रुपए, नगर परिषदों को 3-3 करोड़ रुपए और नगर पालिकाओं को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
1: आज मैं अनूपगढ़ से राजस्थान के लिए भी कुछ घोषणाएं कर रहा हूं, क्योंकि मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका को, जो छोटी नगर पालिका है उसके लिए 1 करोड़ रुपए, प्रत्येक नगर पालिका को, नगर परिषद को 3 करोड़ रुपए और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये समिति की गठित करते हुए आवश्यकता वाले स्थानों को चिन्हीकरण करके उसमें काम कराए जाएंगे। पूरे राजस्थान की घोषणा या अनूपगढ़ से हो रही है, ये मैं सभी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लिए करता।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सादुलशहर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चूनावड़ में दुग्ध शीतलन संयंत्र की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका काम शुरू किया जाएगा।
1: यहाँ मेरे को बताया गया था कि गाजर मंडी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, यहाँ गाजर मंडी होनी चाहिए, तो हमने गाजर मंडी भी खोलने का काम आपके यहाँ किया है। मेरे पास काफी बड़ी सूची है, लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम इस सादुल शहर के अंदर यहाँ हुए हैं। अब ये कह रहे हैं चूनागढ़ में दुग्ध प्लांट भी लगना चाहिए, 2 132 के दे दिए, 84 करोड़ रुपए दिया है 132 के लिए। अब आप बताइए, इतना काम आपके यहाँ हो रहा है, हर विधानसभा में हो रहा है, और आज मैं, क्योंकि मेरे को इन्होंने कहा है, तो ये दुग्ध चिलिंग प्लांट की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ होगा।
0: मुख्यमंत्री ने अनूपगढ़ में बीएसएफ जवानों के साथ संवाद किया। उन्होंने देश की सुरक्षा को मजबूत करने और घुसपैठ तथा तस्करी रोकने में बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। श्री शर्मा ने बीएसएफ चौकी की बॉर्डर आउट पोस्ट और सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी को भी देखा। इस दौरान केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ मार्ग को आधुनिक बनाने के लिए 2386 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 954 साधुवाली बनवाला और राष्ट्रीय राजमार्ग 54 बनवाला हनुमानगढ़ को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच आवागमन सुगम और तेज हो सकेगा। इसके पूरा होने से लालगढ़ जट्टन और पक्का सहरा व्यस्त क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भटनेर किले और पुरातात्विक स्थल कालीबंगा म्यूजियम सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना की मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। श्री शर्मा ने कहा कि सड़कों का मजबूत नेटवर्क सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से मॉनसून के कमजोर पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इससे बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इस बीच बीते 24 घंटों में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सिरोही सहित कुछ स्थानों पर बारिश का दौर चला। सबसे ज्यादा करीब 10 सेंटीमीटर पानी निम्बाहेड़ा में बरसा। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले सप्ताह सामान्य से करीब 30% से ज्यादा पानी बरसा। इससे अब तक हुई वर्षा सामान्य से 5% कम रह गई है। राज्य में अब तक 8 जिलों में अत्यधिक बरसात हुई है, 20 जिलों

0: में सामान्य और 13 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। छोटे बड़े 693 बांधों में से 450 आंशिक रूप से भर गए हैं और 33 बांध लबालब है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में मॉनसून के दौरान मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय राशि जारी करने की घोषणा की। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कप्तान खां कलर। जालौर जिले में स्वतंत्रता दिवस मनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के महाविद्यालयों, मदरसों सहित शैक्षणिक संस्थानों में व्यायाम प्रदर्शन, पीटी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का फाइनल अभ्यास हो रहा है। जिला स्तरीय मुख्य समारोह शाह पूंजा जी गेनाजी स्टेडियम जालौर में होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। इस बीच हर ओर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगी छटा नजर आ रही है। 9 तारीख से शुरू हुए इस अभियान के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। तिरंगा रैली, प्रभात फेरी और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालौर से तिरंगा रैली को रवाना किया। रैली कॉलेज सर्कल, राजेंद्र नगर और अस्पताल चौराहा होते हुए नगर परिषद परिसर पहुंची। इस दौरान लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना से जुड़ने का संदेश दिया गया। नगर परिषद सभा भवन में स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित 2 दिन की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले के भीनमाल शहर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण के तहत 20 करोड़ 99 लाख रुपए के काम प्रस्तावित हैं। इस संबंध में पंचायत समिति में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों से सुझाव लिए गए। परियोजना के तहत एशियन विकास बैंक के वित्त पोषण से अपशिष्ट जल प्रबंधन से जुड़े काम किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर करने के लिए अटल प्रगति पथ योजना के तहत जिले के 5000 से अधिक आबादी वाले 28 गांवों में 56 करोड़ रुपए की लागत से 36.25 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों से जालौर, रानीवाड़ा, सांचौर और आहौर विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न गांवों को सड़क सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। योजना के मुख्य नोडल अधिकारी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव देवेश देवल ने अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। पात्र किसानों को योजनाओं से जुड़ने, कृषि विज्ञान केंद्रों को सशक्त करने और जैविक खेती तथा जल संरक्षण पर भी चर्चा हुई। जालौर स्थित राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी के शिशु गृह में नवजात कन्याओं के गृह प्रवेश और आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि जो माता पिता नवजात बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं, वे उन्हें पालना गृह में सुरक्षित छोड़ सकते हैं। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बालिकाओं को बेबी किट प्रदान की। इस अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित विभिन्न गृहों का निरीक्षण भी किया गया। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए माय भारत जालौर की ओर से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें समूह नृत्य, लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, शॉर्ट फिल्म, स्लोगन लेखन, वाद विवाद और कविता प्रतियोगिताएं हुई। विद्यार्थियों और युवाओं ने नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्त जीवन के संदेश को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से रखा। हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और

0: और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से पौधरोपण किया जा रहा है। लोगों को पौधे लगाने और उनके संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। श्रावण मास के दौरान जिले के शिवालयों में श्रद्धालु पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में भगवान शिव के रुद्राभिषेक के कार्यक्रम हुए और पूजा अर्चना की गई। जिले में इस बार बारिश कम होने से जल स्रोतों में पानी की आवक प्रभावित हुई है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद किसानों ने ग्वार, मूंग, मोठ, मतीरा और बाजरा की बुवाई की थी, लेकिन लंबे समय से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण फसलों को पानी की जरूरत महसूस हो रही है। जिले को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। जालौर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वां स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा अबू थोड़ी देर पछे देश ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल लाल किलारी प्राचीर उ तिरंगो झंडो फहरावेला। स्वाधीनता दिवस रो राज्य स्तर रो जलसो बीकानेर माए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश माए चौमासा रे दौरान मरम्मत और दूजा जरूरी काम सारू रकम जारी करण रो ऐलान कीनो। और प्रदेश रा घणखर हल्का माए काल उ बिरखा माए कमी रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। स्वतंत्रता दिवस काल गौरव और उमाव सागे मनायो जावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा अबू थोड़ी देर पछे 7 बजे देश ने संबोधित करेला। राष्ट्रपति रा संबोधन रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनल माथा करियो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल दिल्ली रा ऐतिहासिक लाल किला माथा तिरंगो झंडो फहरार देश ने संबोधित करेला। ई मौके राष्ट्रीय स्तर रा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम माए पहली दफा राष्ट्रगीत वंदे मातरम ही गायो जावेला।

ઈ પાછે રાષ્ટ્રગાન જનગણ મન ગાયો જાવેલા જલસામાય ફોજ નૌસેના એર વાયુસેનારા કરીબ 2500 કેડેટર માય ભારતરા સ્વયંસેવક હિસ્સો લેવેલા દેશરા ન્યારા ન્યારા હલકાઉં કરીબ 5000 ખાસ પાવણા નઈ ઈ કાર્યક્રમ માય શામિલ હેવણ રોન્યો તો દિયો જિયો હૈ 80वां स्वाधीनता दिवस रे मौके राज्य स्तर रो कार्यक्रम बीकानेर रा करणी सिंह स्टेडियम में राख्यो जावेला जठे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तिरंगो झंडो फहरार जनता ने संबोधित करेला सगला जिला मुख्यालय माथे स्वतंत्रता दिवस जलसा सागे मनायो जावेला बीकानेर रा कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस सरकारागार विभाग रा चुनी जिया अहलकार और कर्मचारियों रो मान करो जावेला कार्यक्रम में देशभक्तियों भरी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां फैला जिला मुख्यालय माथे वेवण वाला कार्यक्रम में न्यारा न्यारा मंत्री झंडो फहरावेला उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा माए वेवण वाला जलसा माए राष्ट्रीय ध्वज फहरावेला युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर और जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी उदयपुर माए तिरंगो झंडो फहरावेला कई जिला माई मंत्री झंडो फहरावेला जतके कुछ जिला माए जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेला राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जयपुर रा लोकभवन माए राख्या जावन वाला खास कार्यक्रम माए झंडो फहरार होशियार विद्यार्थियों रो मान करेला राज्यपाल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जनता ने स्वतंत्रता दिवस री बधाई और शुभकामनावां दीनी है राज्यपाल वाना संदेश माए सगलाऊ भाईचारो बनायो राखता थका विकसित भारत बनावण सारू भागीदारी निभावण री अरज कीनी व जनताऊ हर घर तिरंगा अभियान रा तहत देश रा एका और स्वाभिमान री निशानी तिरंगो झंडो आप आपरा घर माथे जरूर फहरावण री अपील कीनी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वारा संदेश माए कहो कि ओ दिन देश रा एका अखंडता और संप्रभुता री हिफाजत सारू हमेशा समर्पित रहवण री सीख देवे है वह जनताओं देश रा भला न सब ऊंचो राखता थका सामाजिक समरसता री भावना ने

0: मजबूत करण और पानी बचावन रा काम माय भागीदारी रो संकल्प लेवन रियरज कीनी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी स्वतंत्रता दिवस री शुभकामनावां देता थका देश री आजादी सारू लड़बा वाला स्वतंत्रता सेनानिया ने नमन कीनो। इन बीच स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंज आज न्यारी न्यारी ठोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम रख्या जा रहा है। नागौर माए BSF री 1066 आर्टिलरी रेजिमेंट री ओरों तिरंगा रैली निकाली जी। जयपुर मेट्रो री ओरों बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन मथ देश प्रेम री भावनाओं जुड़ियो सेल्फी पॉइंट बनाई जियो है, जठे मुसाफिर फोटो खिंचवार सोशल मीडिया मथ अपलोड कर सके है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस रे मौके प्रदेश माए कई कार्यक्रम रखी जिया। जयपुर रा अल्बर्ट हॉल माए देश रा बंटवाराओं जुड़ी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जी है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय माए प्रदर्शनी लगार पैनलान रे जरिए साल 1947 माए भिया देश रा बंटवारा रे दौरान लोगों री पीड़ा दूजी ठौर जावन और संघर्ष रो दर्शाव करी जियो है। 12 माए संगोष्ठी राख हर देश रा बंटवारा रे दौरान जान गंवावन वाला ने याद करी जिया। इन बीच आज झुंझुनू डीगर नागौर समेत न्यारी न्यारी ठोड़ा तिरंगा रैली निकाली जी और राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाई जियो। डीग माए निकाली जी तिरंगा यात्रा माथे जनता और कारोबारी संगठनारी ओरों फूलां ने बरसात करी जी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्री गंगानगर रा सादुल शहर माए निकाली जी तिरंगा यात्रा माए शामिल भिया। केंद्र सरकार स्वतंत्रता दिवस रे मौके पुलिस अग्निशमन सेवा होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा रा 1057 कर्मचारियों ने वीरता और सेवा पदक देर नवाजन रो ऐलान कीनो है। गृह मंत्रालय आज वीरता रो दर्शाव करन वाला सारू 301 लोगों री लिस्ट जारी कीनी। वीरता पदक जिंदगी और माल असबाब री हिफाजत करन, अपराध रोकन और अपराधियों ने पकड़बार दौरान खास हिम्मत बतावन वाला ने दिया जावे है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज श्री गंगानगर जिला माए अनूपगढ़ और सादुल शहर रो दौरो कीनो। अनूपगढ़ री धान मंडी माए राखी जी जनसभा माए श्री शर्मा विकास रा 389 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाला कामारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। ई मौके वे प्रदेश माए चौमासारी रुत माए मरम्मत रा कामासारू रकम देवन रो ऐलान कीनो।
1: आज मैं अनूपगढ़ से राजस्थान के लिए भी कुछ घोषणाएं कर रहा हूं, क्योंकि मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका को, जो छोटी नगर पालिका है उसके लिए 1 करोड़ रुपए प्रत्येक नगर पालिका को, नगर परिषद को 3 करोड़ रुपए और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये समिति की गठित करते हुए आवश्यकता वाले स्थानों को चिन्हीकरण करके उसमें काम कराए जाएंगे। पूरे राजस्थान की घोषणा या अनूपगढ़ से हो रही है, ये मैं सभी नगर पालिका नगर परिषद और नगर निगम के लिए करता।
0: मुख्यमंत्री सादुल शहर माई जनसभा ने संबोधित कीनी। इस दौरान वह चुनावड़ माए दूध ठंडो करण रो कारखानो खोलन रो ऐलान कीनो।
1: यहाँ मेरे को बताया गया था कि गाजर मंडी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, यहाँ गाजर मंडी होनी चाहिए, तो हमने गाजर मंडी भी खोलने का काम आपके यहाँ किया है। मेरे पास काफी बड़ी सूची है, लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम इस सादुल शहर के अंदर यहाँ हुए हैं। अब ये कह रहे हैं जूनागढ़ में दुग्ध प्लांट भी लगना चाहिए, 2 132 के दे दिए, 84 करोड़ रुपए दिया है 132 के लिए। अब आप बताइए, इतना काम आपके यहाँ हो रहा है, हर विधानसभा में हो रहा है, और आज मैं, क्योंकि मेरे को इन्होंने कहा है, तो ये दुग्ध चिलिंग प्लांट की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ होगा।
0: मुख्यमंत्री अनूपगढ़ माए BSF रा जवाना सा के बातचीत कीनी। वह देश री हिफाजत री व्यवस्था ने मजबूत करण सागे घुसपैठ और तस्करी रोकण माए BSF रा काम री सराहना कीनी। श्री शर्मा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सागे BSF चौकी री बॉर्डर आउटपोस्ट और फौजी असलाह री प्रदर्शनी नई निरखी। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सड़क ने और बेहतर बनावण सारू 2386 करोड़ रुपया मंजूर कीना है। इनु नेशनल हाईवे नंबर 954 साधुवाली बनवाला और नेशनल हाईवे नंबर 54 बनवाला हनुमानगढ़ मा

0: चार लेन री सड़क बनाई जावेला। वो काम पूरो वेवणु लालगढ़ जट्टन और पक्का सहराना माए यातायात रो दबाव कम वेला और जाम री समस्या आगे वेला। ईसा गई भटनेर रा किला और पुरातात्विक ठौड़ कालीबंगा म्यूजियम समेत दूजी ठौड़ा ताई पहुँच आसान बनेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आ परियोजना मंजूर करण सारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रो आभार जतायो है। अरब मौसम राज्य रा घणखर हल्का माए काल नो चौमासारी बिरखा मंदी पड़बारा आसार है। हालांकि उत्तराद और उगणी हल्का माए कठे कठे बिरखा रा आसार है। ए बीचे लाडला 24 घंटा माए चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और सिरोही समेत कठे कठे बिरखा भी। सबू बत्तो करीब 10 सेंटीमीटर पानी चित्तौड़गढ़ जिला रा निम्बाहेड़ा माए बरसियो। जल संसाधन विभाग रे मुजब लाडला सप्ताह सामान्य करीब 30% बत्तो पानी बरसियो। राज्य माए हाल ताई 8 जिला माए जोरदार, 20 जिला माए सामान्य और 13 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो है। छोटा मोटा 693 बंधा मायू 450 थोड़ा घना भरिया है, जबकि 33 बंधा पूरा भर गया है। काल सावन री तीज हरियाली तीज रा तौर मनाई जावेला। खास तौर महिलाओं रो पर्व मानी जावन वाली हरियाली तीज रे मौके मेहंदी लगावन झूला झूलन और लोक गीतों रो खास महत्व है। कई ठोणा मेला ही भरे है। तीजों पहले आज लोक पर्व सिंजारो मनायो जा रियो है। इनमाए नुवी पढ़नी लुगाइया ने ससुराल री ओर सिंजारो भेजो जावे है। जिनमाए खास तौर लहरिया सजवा संवरवारो सामान चूड़ियाँ और घेवर शामिल वह है। तीज रे मौके पर्यटन विभाग री ओर राजधानी जयपुर माए काल और 16 अगस्त ने तीज री सवारी निकाली जावेला। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह रा 16 अगस्त ने चित्तौड़गढ़ और अलवर रा प्रस्तावित दौरा री तैयारी रो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जायजो लीनो व संबंधित जिला प्रशासन ने सगली जरूरी समस्याओं टेम सर पूरी करण रा हुक्म दीना। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वां स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा मु थोड़ी देर पछे देश ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल लाल किलारी प्राचीर तिरंगो झंडो फहरावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश माए चौमासा रे दौरान मरम्मत और दूजा जरूरी कामा सारू रकम जारी करण रो ऐलान कीनो। अर प्रदेश रा घणखर हल्का माए काल बिरखा माए कमी रा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से सुने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। कृपया प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने आईएसआई मार्क देखकर ही खरीदें क्योंकि बीआईएस आईएसआई मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें क्योंकि बीआईएस हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर.
1: This is Akashvani. On the eve of Independence Day, we now bring you Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
2: ये आकाशवाणी है. स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश.

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं।

प्रतिभावान खिलाड़ी शिल्पकार तथा कलाकार मार्गदर्शक बुद्धिजीवी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी कार्यनिष्ठ सिविल सेवक अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुई उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण

कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है, विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलबत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार के अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जनकल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नई रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं।

ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों के औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक

मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को यह कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपने

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: Swatantrata Divas ki purva sandhya par abhi aap Bharat ki mananiya Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu ka rashtr ke naam sandesh sun rahe the.
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने पूर्व और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में ये फिल्मी गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम प्रायोजित खेतीरी बाता टांटिया यूनिवर्सिटी रसात सुने।

0: खेती म्हारी धरती री पिछाण, किसान म्हारे देश री शान।
1: उपजाऊ माटी फसल शांतरी, पल्ले बांध लिया बात कामरी।
0: कृषि शिक्षा, आधुनिक तकनीक और शोध री नई जानकारियां रे साथ है प्रस्तुत है खेतरी बात टांटिया यूनिवर्सिटी रे साथ,
1: जठे खेतरी हर समस्या पर होशी बात शोध शु मिलसी खेती रा नुआ समाधान।
0: माटी री जांच, रोग पिछाण, हर नुवी फसला रो ज्ञान, पशुधन और कृषि व्यवसाय पर होशी बात
1: खेतरी बात टांटिया यूनिवर्सिटी रे साथ।
0: प्रायोजक कृषि संकाय टांटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर। राम राम सा, कार्यक्रम खेती री बात टांटिया यूनिवर्सिटी रे साथ लेर में सुमन शेखावत हाजिर हूँ। हर मारे सागे है भाई रमेश चावरिया।
2: मेरा भी घणन घणा राम राम सुनन आला ने और सुमन भाई थाने भी।
0: रमेश भाई, माटी और जल रो जन्म से लेर मरण तक अपने साथ रहन रो जको महत्व है वो आपा सगला जाना। तो आ माटी जल नहीं होवे तो अन्न नहीं उपजे और मिनख रो जको जीणो है वो दोरो हो जावे।
2: सियाणी बात कही है सुमन भाई सा, क्योंकि माटी बिना और पानी बिना मिनख को जको जीवन है वो असंभव मानस का आपा। और माटी अगर सही है और पानी अगर सही है तो जीवन जको है वो या मानस का अपनो सही है।
0: तो ये माटी और जल रे महत्व से आपा इनकार नहीं कर सका।
2: बिल्कुल सा।
0: तो आज रे इन कार्यक्रम रो विषय जको है वो है मृदा एवं सिंचाई जल परीक्षण।
2: बिल्कुल, माटी जांच और पानी की जकी जांच है बात जरूरी होगी। अब जो को समा, अब जो को वक्त चलन रे सुमन भाई, इंग मा के है कि माटी की जकी भौतिक दशा है, बिंग जो को स्वभाव है वो बिल्कुल ही बदल गयो।
0: बिल्कुल।
2: और बिंग जकी जांच है, बिंग जकी परख है बा करवानी जरूरी है। और आ बात जकी है बा हर किसान भाई ने समझनी भी जरूरी है।
0: बिल्कुल रमेश भाई, अरे इन विषय पर बात करन सारू आज आमंत्रित करया हां डॉक्टर सतदेव जी ने, जका टांटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर माए मृदा एवं जल परीक्षण रा प्रभारी है और मृदा विज्ञान विभाग कृषि संकाय रा विभागाध्यक्ष भी है।
2: बिल्कुल, ए बड़ा सुलझेड़ा और अच्छा इंसान है जका जानकारी लेर आया है अपने ती। तो आशु आज आप बतल कर सियां और माटी और पानी की जांच के बारे में बिना के फायदा है कितनी जरूरत है बा आप आज आशु पूछा। तो आप करा स्वागत आंगो
0: डॉक्टर साहब कार्यक्रम में, आप मोकलो मोकलो स्वागत है।
3: सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आज अपने खेती री बात टांटिया विश्वविद्यालय के सागे करांगा, जी पर मिट्टी की जांच और पानी की जांच का के लाभ है, बिंगो के महत्व है और बी आप कृषि में किया उन्नति लियास का इनके बारे में चर्चा करांगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि पानी और माटी जिकी है बा फसल को या मुख्य अंग मानस का आपा, बिग बगैर जिकी फसल है बा ना तो आप शांति फसल ले सका और ना जिकी आमदनी है बा आप बढ़िया ले सका।
0: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला आप माने वो बताओ कि एक किसान खातर मृदा परीक्षण या आपा कवा के माटी जांच और पानी की जांच है बा जरूरी क्यों है?
3: आजकल के है भाई साहब, समय परिवर्तन हो गया, मिट्टी का भी दशा चेंज हुई है। मिट्टी की जिकी भौतिक शक्ति है, चाहे रासायनिक शक्ति है, चाहे जैविक शक्तियाँ हैं, वे सारी बदलाव आ गई है। पर अगर आप यहाँ देख पावा अपन कोई पतो को चल है, जितनी आप जांच नहीं कर पावगा, जितनी अपन कोई आइडिया को नहीं होगा के समस्या है के समस्या ना है। तो अपन इन खातर जाँच बहुत जरूरी है। जाँच में आप इन माँ विभिन्न प्रकार का जिका तत्व है वे चेक करांगा, जो अपन पता चलेगा कि अपनी मिट्टी का माँ के कमजोरी है के आप सुधार कर सका। तो ये बहुत सारी चीजा हुआ है।
0: हाँ सर।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि अब आपने ही क्षेत्र का मां किया है का आपने जो किसान भाई लोग है वे बिरानी क्षेत्र में भी बीजांत करे और पानी क्षेत्र जो को सिंची क्षेत्र है भट्ठे भी बीजांत करे और अठे आपने गंगानगर का जो बागवानी जकी है वह भी अठे की मशहूर है। तो नमूना लेने के लिए के तरीका अपनाना चाहिए, के तरीके से आप नमूना लेना चाहिए, चाहे आप खड़ी फसल की बात करा या फिर आप बागवानी की बात करा।
3: जी साहब, अपने पहले तो किसान भैया ने पता होना चाहिए कि नमूने को सही समय के हुआ है, निर्धारित समय के हुआ है, बी हिसाब को अपन नमूनों ले पावा। दूसरों फसल में नमूनों लेना है या बागवानी के रूप में नमूनों लेना है तो वो भी पता होना चाहिए। तो अपने नमूनों लेने के लिए सही वक्त हुआ है जब अपनी क्रोप कट जाए, बिंग बाद में अपन नमूनों लेना है, पहला तो सैंपल का चीज जरूरी है। अगर आप सलाह गिड़ी यार बिंग में अपना सैंपल लेना है तो बिंग में आप करना है जी, पहला आपनों जी मान लो एक हेक्टेयर जमीन है, चार बीघा जमीन है या आठ बीघा जमीन है, तो बिंग माँ अलग अलग जगह आप निर्धारित कर लिया कि अठू अपन सैंपल लेना है। तो बिंग माँ भी कुछ सावधानियां रखनी पड़े जिका पर भी आप चर्चा करांगा, पर आप अभी सैंपल लेने को नमूनों किए हैं कि बिंग माँ आप लगभग आठ दस जगह निर्धारित कर लिया गया बठू अपन सैंपल लेना है।
0: जी।
3: बिंग बाद में आप के करा बिंग ऊपर की जगह निर्धारित करिए बठू कोई एक दो सेंटीमीटर की मिट्टी हटा देंगे और बिंग माँ आप 20 सेप को

0: जो इंग्लिश में वी अकार को गड्ढों में लगावांगा, कोई खुरपी हूँ आप भी चीजों पर ध्यान आ रखनी है कि जी वह खुरपी आप लेन लाग रहे हैं या जो सोयल सैंपलर जी को आप लेन लाग रहे हैं वो साफ सुथरा हो, बीम पर कोई जंग ना लागेड़ हो, क्योंकि जंग लागेड़ होगा तो थारी फिर रिपोर्ट गलत आवेगी। जिको थे जिको जो को बैलेंस फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर यूज करोगे तो थाने अनुशंसा हो जाएगी।
1: अच्छा थारा बात भी चला डॉक्टर साहब, एक बात आप पूछनी चाहूँ के जिक्की खुरपी सियो या जका फावड़ा सियो कसी सियो आप नमूनो लेनो है भी कोई धातु विशेष को भी ध्यान रखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने कोशिश करो कोई स्टील की मनीड़ी होए तो बीऊ लेवा, या आप आजकल कार्बन लेपित भी आन ला रहे हैं, बहुत सारा आकार आवे तो
2: हाँ
0: आप
2: सर,
0: यूज कर सका।
2: हाँ सर,
0: और आप वी शेप में जिया गड्ढो लगावा तो बा मिट्टी बाहर निकाल दिया, और बिंग बाद में वी शेप के माँ समांतर पट्टी के माँ आप खुरपी लगावा, और बे 8 10 जगह आप निर्धारित करी है भट्ठू जी की बा मिट्टी आवे बिन इकट्ठी कर लिया,
2: जी
0: इकट्ठी करके बिन के कर लिया बढ़िया तरीका मिक्स कर लिया, वो आपनों एक कंपोजिट सैंपल तैयार हो जाएगा।
2: जी
0: बिंग बाद में के करा आप बिन एक कोई साफ कपड़ा पर या साफ कोई अपनों कोई मतलब ट्रे वगैरह हुआ है उसके अंदर डाल के बढ़िया मिक्स करके बिना आंगली को 4 भागा में बांट लेवा, बिना 2 भाग हटा दिया और 2 भाग फिर दोबारा मिक्स कर लिया।
2: जी
0: आप प्रोसेस आप जत ही करा जत ही आपने कहना 500 ग्राम सैंपल ना रहे जमे।
2: जी डॉक्टर साहब, कितनी गहराई रो खाडो खोदना
0: देखो
2: चाहिए?
0: जी अपने अगर फसल को लेना है तो आपने 15-20 सेंटीमीटर, अगर बागवानी का लेना है अगर नयो बाग लगाना है तो आपने फिर 6 फुट तक की गहराई को सैंपल लेना है, जिकम 1 फुट अगो अलग, 2 फुट को अलग, 3 को अलग, 4 को अलग, 5 को और या 6 को अलग। अगर 5 सालों ज्यादा बाग लगेड़ो किंग
2: जी
0: किसान गए तो फिर आप 3 फुट तक सैंपल लेवा। तो आप बागवानी को इतो गहरो सैंपल लेने को कारण वो है जी क्योंकि आपने एरिया में चूना की लेयर आजकल मिलन ला रही है जिकन आपा कैल्शियम कार्बोनेट का,
2: जी
0: और जठे कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है बठे ज्यादातर किसान भाई किन्नू लगान ला रहे हैं भी वहां बड़ी दिक्कत आन ला रही है,
2: जी
0: तो वो टेस्ट कराना अपन बहुत जरूरी है
2: जी
0: जो
2: डॉक्टर
0: अपन
2: साहब,
0: जान
2: आप
0: लागे
2: जिकी
0: वो।
2: बात कह रहे हो, अभी मैं आप जिकी मेंशन करी हो के फसल अगर आप लेवा या बागवानी का, बा दोना में फर्क हुआ है
0: जी जी
2: नमूनों लेने में?
0: जी तो आपने की फसल में तो की जड़ा इतनी भाई सा जावे को नहीं डीप, पर जिकी आपने बागवानी की को रोप लेवा बागवानी की जड़ा जावे ज्यादा गहरी
2: हाँ सर
0: तो अपन ही खातर भी गहराई तक का सैंपल लेना पड़े।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने किया कि एक समय भी हुआ चाहे नमूना लेने की बात करा तो या फिर पानी जांच की बात करा तो कितने टाइम बाद का मां नमूनों लेना जरूरी है, और नमूनों लेने के लिए जगह किसान भाई लोग है बे या कोई उपकरण ले गया हुआ जगह मां माटी भेड़ी करे तो वो उपकरण जो को है बा कोई थैली है या फिर किसी होनी चाहिए बीमा।
0: जी, अपने सालों पहला तो वो ध्यान रखना है जी, अपनी फसल कट जाए बिंग बाद में आपा नमूनो लेवा, ठीक है? अपना उपकरण जिका भी है बिंग में किसी भी प्रकार को जंग वगैरह ना लगेड़ा होना चाहिए, या खुरपी लेवा तो खुरपी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, कोशिश करा कि नहीं हुआ है, ठीक है? और ना भी हुआ तो आपा फिर अगर स्टील की खुरपी अपन मार्केट में मिल जाए तो आपा बाह ले आगे भी लेस का, तो बीहू किया कि आपा खुरपी जी की लेवा बा लो की हुआ लो में लगेड़ो हुआ जंग जी,
2: जी
0: तो वो किया जंग आपने कठे कठे मिट्टी का मिक्स हो जाए जिकी आप आयरन निकालांगा जिकी रीडिंग निकालांगा बिंग में अपन दिक्कत आ जाएगी।
1: नहीं, कई बार जका नमूना निकाल लेवे माटी के माऊ और
0: जी
1: बीयू बाद गमा किया के कई भाई लोग जका है बे पल्ली के ऊपर जकी पल्ली के ऊपर इकट्ठो करे बा पल्ली जकी है बा साफ सुथरी होनी चाहिए बा कोई आपने
0: बिल्कुल
1: खाद बीज
0: बिल्कुल
1: वाली नहीं होनी
0: जी,
1: चाहिए है ना।
0: आ चीज की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जिके भी आपा जिके पर भी आपा सैंपल रखा या जिकम सैंपल डालना रहे जिकी थैली में, बा थैली किसी भी प्रकार दूषित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे वो पेस्टिसाइड डालीड़ा हो, भी हूँ के है कि थारी कठे न कठे जिकी रिपोर्ट है बिग में बदलाव आ जाएगा, और भी रिपोर्ट के अनुसार आप अनुशंसा करेंगे तो बिग में आपको पूरा बदलाव आ जाएगा।
2: जी डॉक्टर साहब, जब अपना किसान भाई बहन माटी री जांच करवावे तो माने वो बताई जाए कि आपकी माटी में जैविक कार्बन री कमी है, इन स्थिति में किसाना ने काई करना चाहिए? अरे जैविक कार्बन रे महत्व पर भी मैं आपसे विस्तार से जानकारी चाहूँ।
0: बिल्कुल जी, जैविक कार्बन मैं सारों पहला भाई साहब थाने बताना चाहूँ कि जैविक कार्बन के हुआ है कि आपने जी को गोबर की खाद मिलावा कंपोस्ट मिलावा या केंचो की खाद मिलावा तो वो कार्बन मिट्टी के माँ इकट्ठो हुआ है, परंतु आज की जी की दशा है बिंग माँ कार्बन की कमी आन ला रही है अपनी माटिया माँ,
2: जी
0: तो बिंग लिए अपन के करना चाहिए अगर आपने घर है गोबर पशु रखा तो आप गोबर की खाद ने बढ़िया तैयार करके आप मिला के आप गेरस का कंपोस्ट बना के आप गेरस का
2: हाँ सर,
0: केंचो की खाद आप घेरा बना के गेरस का बिंग बाद में एक आपने जंतर बोला चिका जिको
1: जका ने
0: डेंचो हुआ है,
1: हाँ जका ने लढेण भी के दे आपन अटे की
0: हाँ
1: भाषा गवा।
0: वो भी आपा के नाम यूज कर सका। बिंग अलावा जिको दलनी को रोप को कचरो हुए बिन भी आपा फसल में मिलास का, ज्यों आपनों जैविक कार्बन बढ़ेगो, और जैविक कार्बन जद बढ़ेगो जद बिंग मां सूक्ष्म जीवियों की गतिविधि भी बढ़ेगी,
2: जी
0: और सूक्ष्म जीवियों की गतिविधि बढ़ेगी

0: कि जिकी रासायनिक क्रिया होनी चाहिए सोयल में जो सुचारू रूप चालेगी। अब दिक्कत की हो रही है भाई साहब, आपा मिट्टी का मां जैविक कार्बन मिलान को ला गया। तो जिया एक उदाहरण दूं मैं कि कोई आदमी ने आपा मिठाई दिमार बिन मिठो ही मिठो खुआबो करा,
1: सच्ची बात
0: तो भी
1: है।
0: उनकी है कि वो 2 4 दिन तो बिना अच्छो लगे वो बिन
1: हाँ
0: बाद में क्यों हो वो भी मन कौन करे वो खान
1: बिल्कुल
0: को।
1: बिल्कुल
0: बस बात दशा जमीन की हो रही है जी।
1: सर
0: अब कि आपा मतलब रासायनिक उर्वरक डालन ला रहा बे सूक्ष्म जीवियों की गतिविधि एकदम कम होगी।
1: बिल्कुल सही बात है सुमन भाई साहब, डॉक्टर साहब के जो का किसान भाई लोग है बेकी लालच का माँ पड़ गया, और वो जो को रासायनिक तरीको है वो इतो ज्यादा आपने इस्तेमाल कर लागे कि माटी को जो को स्वभाव है बिल्कुल ही खराब कर दिया। अब देखा ला रहा कई जगह यहाँ पर कालियो सोरो धोड़ियो सोरो भी आन ला रहे है ना,
0: जी
1: तो
0: जी
1: बिंगो जो को प्रभाव है वो भी अपने फसलों के ऊपर पड़े है। तो इस
0: जी
1: वास्ते माटी की जी की जांच बहुत जरूरी है ना।
0: जी जी जी
1: बिल्कुल रमेश भाई, अभी डॉक्टर साहब बात करिए, मिठरी बात करी,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: एक मीठो सो गीत अपन श्रोता मैंने सुना दिया तो बिल्कुल, क्या।
0: अपा डॉक्टर जी ने भी सुना दिया और जगह सुन ला रहे है बने भी एक गीत जो है वो सुना दिया। लो सुनो थे वो गीत।

0: खेती म्हारी धरती री पिछाण, किसान म्हारे देश री शान।
1: उपजाऊ माटी फसल शांतरी, पल्ले बांध लियो बात कामरी।
0: कृषि शिक्षा, आधुनिक तकनीक और शोध री नई जानकारियां रे साथ है, प्रस्तुत है खेतरी बात टांटिया यूनिवर्सिटी रे साथ।
1: जठे खेतरी हर समस्या पर होशी बात शोध शु मिलसी, खेती रा नुआ समाधान।
0: माटी री जांच, रोग पिछाण, हर नुवी फसलां रो ज्ञान, पशुधन और कृषि व्यवसाय पर होशी बात।
1: खेतरी बात टांटिया यूनिवर्सिटी रे साथ।
0: प्रायोजक कृषि संकाय टांटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर।
2: लो सावण को जो को गीत है सुमन भाई सा सुना दियो अपना सुनने वाला ने और डाक्टर जी जका है अन्य भी आपा सुना दियो
0: और इन कार्यक्रम में मारे श्रोतावा रो एक बार फिर
2: स्वागत करा।
0: डॉक्टर साहब, कई किसान जका भाई अपना है, भाई बहन है, बाने जो को माटी रो नमूनो लेवता थका कुन चीज की सावधानी खास तौर पर रखनी चाहिए?
3: बिल्कुल भाई साहब, मुख्य रूप से सावधानी अपन जो सैंपल लेनो है, एक समय को ध्यान रखनो है कि कद की समय अपन सैंपल लेनो है, तो समय बड़ो उचित होना चाहिए। जिया अपनी फसल कट गई भी है, बाद में सैंपल लेवा। दूसरो के सैंपल आप जद ना लेवा, जद आप हाल फिलहाल ही उर्वरक डालिया है, हाल फिलहाल ही कोई जैविक को कंपोस्ट डाली है, वर्मी कंपोस्ट डाली है या गोबर की खाद डाली है, या इसी जगह हम सैंपल ना लेवा जठे नाली मणिड़ी हुआ है, खड़ो मणिड़ो हुआ है, या पेड़ लागड़ो है, सारे सैंपल ना लेवा, या अपनी खेत की चारों तरफ की बाउंड्री हुआ है बटू सैंपल ना लेवा। तो ये कुछ सावधानियां हैं, बस सावधानियां रख के फिर अपन सैंपल लेना चाहिए।
2: और इंग सके सुन भाई सा की है कि आपने घरांग में जो की अकूलडियां है, बे जगह किसान भाई लोग बे अकूलडी ने चक के खेत में ले जाके नाक दे वे, और बा अकूलडी की है कि बरसात को पानी है या फिर जो आप सिंचाई वाले पानी दिया तो बा सारे कर घुड़के जावे और पूरे खेत का वहां फिर ले, तो बिंगो भी डॉक्टर साहब क्यों ना ध्यान रखना जरूरी है कि खाद रेडी है बट नमूनो जो है वो नहीं लेना है।
3: बिल्कुल, ये चीज को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि थे जठे मान लियो गोबर की खाद गिरीड़ी है या केंचुओं की खाद गिरीड़ी है, बटू थे सैंपल ले लूगा तो थारो जी की रिपोर्ट है जैविक कार्बन बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ये चीजें अपन ने ध्यान रखनी है, जब भी सैंपल लेना है तो कुछ सावधानियों के साथ अपन सैंपल लेना है।
2: और इन माटी की पीएच मान की बात करा तो बढ़िया और बेहतर फसल के लिए माटी को पीएच मान की तो होना चाहिए।
3: देखो जी, पीएच मान है नॉर्मली या सामान्य फसलों के लिए जी 6.5-7.5 के बीच में होना चाहिए। आप पीएच के हो है कि जमींदार कुछ हिस्सा फर्टिलाइजर डाल दे जो पीएच बढ़ भी जाए, या कुआ को पानी लगा हुआ है जो भी पीएच बढ़ जाए, क्योंकि पीएच कुआ का पानी में अपनों सोर हुआ है।
2: बिल्कुल, आपने तो रड़वा पानी भी चला और ट्यूबवेल को जो पानी है वो भी चला है, और भाई लोग जगह है बेकी है कि खारो पानी अब धरती को दिन ब दिन हो गयो है ना, जो पानी है वो चरको हो गयो, तो वो पानी लगा लगा के भी पीएच मान में थोड़ा बहुत बदलाव।
3: हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपा कुआ को पानी लगावांगा तो अपन यहाँ ध्यान को लगागो, जमींदार के करे किसान भाई के करे कि जी थोड़ो सो मारो नमकीन है पानी, कोई दिक्कत को नहीं है, लगाया रखे, पर 3-4 साल बाद में क्यों है तो मिट्टी का माँ धोड़ो सोरो आ जाए या कालो सोरो आ जाए, ज्यादा टाइम हो जाए तो।
2: हाँ हाँ,
3: इसी कंडीशन ज्यादा अपनी माटी कई बार की हुआ है अपना पीएच डाउन उड़ जाए, ज्यादा अम्लीय हो जाए, तो ये कारण हुआ है बे कठे ने कठे अपना पोषक तत्व जी का मिट्टी का मैं बन प्रभावित करे जी।
2: बिल्कुल,
3: हाँ, चीजों को अपन विशेष ध्यान रखना पड़े।
2: भी मोटी सी बात तो आई है सुमन भाई साहब के, अब माटी की जी दशा है स्वभाव जो है वो सुधारने के लिए एक तो आपने फसल चक्कर जी डॉक्टर साहब बतावा अपनानो जरूरी है, और हरी खाद है बा देनी जरूरी है।
3: जी जी
2: है ना
0: डॉक्टर साहब, कई किसान भाई ईशा भी है जका माटी जांच री रिपोर्ट आ जावे फिर बाद उर्वरकों रो जो को प्रयोग है वो परंपरागत सोच से ही करता रहे।
3: जी जी, आ बहुत ही अपने एक परंपरागत रीति मना रखी है किसान भाइया, तो यूं अपन आगे बढ़ गए आने की आवश्यकता है, क्योंकि आपा टेस्ट करवाई है, आपने मिट्टी की जांच करवाई है, जांच के अनुसार आपा अनुशंसा देवा कि

0: आपां ने कितनी आवश्यकता है प्रति क्रोप लगाने की, जो आपां क्रोप है जो फसल लगान लग
1: फसल
0: रहे हैं, तो बिंग मां आपां जब जांच करा तो बिंग मां रिकमेंडेशन देवा कि जी थाने इतनी गोबर की खाद डालने की आवश्यकता है, इतनी थाने यूरिया डालने की आवश्यकता है, इतनी डीएपी डालने की आवश्यकता है, या इतो जो पोटास फर्टिलाइजर है बिंगा उर्वरक डालने की आवश्यकता है। फिर भी कुछ किसान भाई है जिका ज़्यादा डाल दें, भी उन नुकसान क्यों है जी? आपा अगर मुख्य पोषक तत्व ज़्यादा डालता रहेगा तो जो
1: जी
0: सूक्ष्म पोषक तत्व है वे दब जेवा नीचे, तो वे पौधा ने मिले को नहीं, तो बंगो विकार कठन कठे आपने फसल में, कठन कठे बागवानी फसला में वहाँ दिखने न मिले,
1: जी जी
0: तो वो आपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो किसान भाई अगर जांच के तौर पर भी नहीं डाल रहे हैं तो मैंने समझने की आवश्यकता है कि आप जांच कराई है तो बिंग अनुसार आपने अनुशंसा करनी चाहिए उर्वरकान की।
1: बिल्कुल रमेश भाई, आपा ओ निवेदन कर सका आपने श्रोतावान है कि
0: बिल्कुल
1: भी डॉक्टर साहब जी की सलाह दे रहा है जी पर अमल भी करे वे।
0: सुमन भाई सा की है कि आपने जगह भाई लोग है ना बे जांच करवाने के बाद में भी जगह खाद उर्वरक देवे है ना फालतू का, तो वो क्या है कि वो एक बात चालो चाल पकड़ रखी है वा है
1: बिल्कुल
0: ना, और वो डरो जो को है वो छोड़ेगा फिर ही माटी नापा सुधार सका।
1: बिल्कुल
0: और इन अलावा देखा तो अब सिंचाई पानी की बात करें डॉक्टर साहब, तो सिंचाई पानी की भी जांच करवानी जरूरी है।
1: जी साहब, सिंचाई पानी में मुख्य रूप से मैं थाने बताऊं, पीएच हो गयो, विद्युत चालकता होगी, अपने सोडियम पोटेशियम जिका अपने धोड़ो सोरो के वहाँ जिका में कैल्शियम मैग्नीशियम आ गया,
0: हाँ
1: काड़ो सोरो में कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आ गया, तो ये बहुत सारी चीज़ें हुआ है ये भाई साहब अपने पतों को चला है कि किस चीज़ें हैं
0: हाँ सर, खारा
1: पानी
0: पानी
1: का
0: की वजह
1: मां।
0: से डॉक्टर
1: पर
0: साहब,
1: आप पानी में जब
0: हाँ
1: लंबा समय जमीन में लगावा तो आपनी जमीन 3-4 साल बाद में खराब हो जाए।
0: ताल बन
1: और
0: जाए सा
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल।
1: आप जैविक कार्बन डालन को लाग रहा और पानी आप खारो लगान ला रहा, तो ब्यू की है कि 3-4 साल बाद में जो आप उत्पादन है बिंग माँ पूर्ण रूप कमी आ जाए, हाँ सर
0: फिर जी जमींदार कह जी खराब हो गया, दिक्कत आन ला रही है, फिर माने सही समाधान कौन मिल रहा है? तो भाई पहले ही अगर जांच के बेस पर आप काम करा, जांच करके कि जी कितनी डालने की आवश्यकता है, अपन के समाधान करना चाहिए, तो वो काम करा तो निश्चित रूप वांगो सुधार होगा।
1: तो पानी
0: जी
1: जांच के लिए क्या करना है?
0: पानी जांच के लिए जी आपने सैंपल लेना पड़ेगा, सैंपल अगर आप नलकूप को या ट्यूबवेल को लेन लाग रहे हैं तो ट्यूबवेल ने लगभग लगभग थे आधा घंटे चला गए पानी को एकदम बढ़िया फ्लो बन जाए,
1: हाँ सर
0: बिंग बाद में बढ़िया एक साफ सुथरी बोतल में लेगा, और बोतल भी कोई सर्फू या साबुन नहीं धोईडी होनी चाहिए, एकदम गर्म पानी गुनगुने पानी में धोईडी होनी चाहिए। बिंग माथे सैंपल लेके आ जाओ, थारो टेस्ट हो जाएगा, और बिंग में जो भी बिंग में जांच में प्राप्त हुआ कि बी हिसाब मैं थाने रिजल्ट लिख के दूंगा
1: जी
0: कि जी आ दिक्कत है इन माथा ने, वो समाधान करने की आवश्यकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जे सिंचाई जल में लवणता या क्षारीयता ज़्यादा आ जावे
0: जी
1: तो मिट्टी पर और फसल पर ही रोग कई प्रभाव
0: जी
1: पड़े।
0: भाई साहब, देखो जो माटी का माँ अपना पोषक तत्व है भी आपने पीएच मानू प्रभावित होगा, और पीएच मान मान लियो 7.5 ऊपर चले गए हो तो थारी माटी लवणीयता का माँ आ जाएगी, और 8.5 ऊपर चले गए हो तो क्षारीयता आ जाएगी। अगर मान लियो थारो पीएच 7 नीचा आ गयो तो अम्लीयता हो जाएगी। पर अब जब ये कंडीशन आवा ये दशा आवा है तो आपने मिट्टी का जो पोषक तत्व है भी बिगड़ जाए, वो बैलेंस बिगड़ जाए, तो अपन ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप पहला जांच करूँगा, जांच पर आपने मिट्टी को के पीएच आयो है, बिंग अनुसार आपने मिट्टी की के स्थिति है लवणीय है या क्षारीय है या अम्लीय है भी हिसाब आप समाधान करा बिंग। तो बिंग लिए
1: बिल्कुल
0: किस्मा
1: सर
0: भी आपने
1: बिल्कुल
0: जगह,
1: जी
0: हाँ
1: बिल्कुल, कुछ अम्लीयता की सहनशील फसलें हैं, कुछ क्षारीयता में भी है, कुछ लवणीयता में भी है। अगर मान लियो आपनों पीएच 7.5 ऊपर चले जावे तो आप जिप्सम डाल सका, जिप्सम डाल के समाधान कर सका। अगर आपनी मट्टी लवणीयता का में है तो बैठे आप जैविक कार्बन या कंपोस्ट डाल के, या आप अभी जंतर की बात करी ढेंचे की बात करी हाँ
0: वो आप
1: सर
0: डाल के कर सका,
1: बिल्कुल
0: या अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा में आप चूनो डाल के कुछ समाधान कर सका, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, हर साल मिट्टी की जांच करवानी जरूरी है।
0: आज की सिचुएशन, आज की जो दशा हो रही है मिट्टियाँ की वह बड़ी दुरुस्त हो रही है, तो भी हिसाब हूँ तो मैं तो कुछ सीजन वाइज फार्मर ने जमींदार ने चेक करवानी चाहिए, जो अपन आपने खेत को ध्यान लगे कि आपने मिट्टी की उर्वरा शक्ति किसी के है।
1: बिल्कुल
0: और आखिर में डॉक्टर साहब थे आ बात बता दो कि आपने जो किसान भाई लोग है जगह खेती खड़ा मिनक है बे माटी जांच और पानी जांच की जो बात है बिंग की महत्व है बात समझे, तो बने थे आखिर में के संदेश देना चाहो?
1: मेरा सारा किसान भाइयों को एक अनुरोध है कि थे सभी माटी चेक करवाओ, जो सिंचाई को पानी लगा रहे हो बिंगो बढ़िया चेक करवाओ, और बिंग अनुसार ही थे उर्वरकांगी अनुशंसा करो, जैविक कार्बन डालो,
0: तो आपने देश

0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वांगी एक टेक लाइन देड़ी है, स्वस्थ धरा और खेत हरा। तो आपनी जब वसुंधरा बढ़िया होगी तो भी उनका उपजाऊ होना रहा बीज है वह भी बहुत बढ़िया होगा। तो मेरा सभी किसान भाइयों निवेदन है कि अपने मिट्टी पानी को जरूर जांच करवाओ।
1: वाह बिल्कुल। और आपने जका विशेषज्ञ है, आपनी जी की सरकार है भी ई बात पर ही जोर देवे डॉक्टर साहब, के लागत कम और मुनाफो ज्यादा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब स्याणा मैंने के करे नी के खेती कसमा सेती है ना। और खेती के अगर बिना जानकारी अगर आप खेती करा तो बिंग कोई फायदो कोनी, बिंग कोई अपन आमदनी कोनी हुए नहीं। और जानकारी राखनी किसी किसी बातें की है, जो अपनी माटी के माँ किसी किसी पोषक तत्व तो होना जरूरी है और वहाँ पोषक तत्वों की खाना पूर्ति जी की है बापा किया कर सका। आप भी लगे हाथ अपना जगह किसान भाई लोग सुन ला रहे बन बता दो।
0: बिल्कुल जी, सामान्य अपने किसान भाइयों की जो माटी टेस्ट करा आपा तो बिग में आपा पीएच निकाला, विद्युत चालकता निकाला, जैविक कार्बन निकाला, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व है जिका में आपा आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया और बोरन, ये
1: बिल्कुल
0: सारी चीज़ें निकाला। अगर आपने कहना बागवानी को सैंपल है तो बिग में आपा कैल्शियम कार्बोनेट भी निकाला, क्योंकि
1: अच्छा
0: जी की चूना की लेर मन ला रही है बिंग कारण की है किन्वा की फसल में और बागवानी फसल में जी बहुत दिक्कत आने ला रही है, तो बिंग में भी वे चीज़ें निकाला। और आप जो सिंचाई पानी आवा है, सिंचाई पानी का माँ आपा की करा पीएच ईसी बिंग माँ जी को धोड़ो सोरो कालो सोरो जी को थे बताओ आपा जी का पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ें निकाला। जब मैं तारा निकाल के बताऊँगा कि जी थारो वो स्टेटस है मिट्टी को।
1: नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। तो लेकिन किसान भाई लोग जगह है ना भी के ज़्यादा खेचल करके राजी कोने नहीं। अब देखा नहीं तो मशीनी युग आ गयो डॉक्टर साहब, और मशीनी युग में किसान भाई जगह है भी ज़्यादा दोरो कोनी होना चाहे नहीं, फिर भी वो कोई ज़्यादा लंबो चौड़ो काम कोनी नहीं, तो महंगो काम कोनी नहीं। माटी जाँच है जिकी बा करवानी जरूरी है, पानी जाँच जो है वो करवाना जरूरी है। तो इस कई फायदा भी है। और हूँ बता दूँ कि पानी की जाँच करवा ले तो आप बा किस्मा को ही भी जाँच करांगा, जिकी किस्मा आपने भी पानी न माने तो फालतू जो खर्चो है ना वो भी अपनों टर्जे है
0: साची
1: ना।
0: बात कही रमेश भाई,
1: और सुमन भाई एक दो है कह
0: बिल्कुल
1: खेती जी की है ना भाग कितनी कोखी है डॉक्टर साहब, कह एक दो है कोई कवि को लिखड़ो है कह फिड्डी जुती फटाक्षू, कह फिड्डी जुती फटाक्षू और गुद्दी पुगे रेत,
0: वाह
1: अर
0: जी,
1: किरसो जमारो ओखो गणो फिर भी करे खेत स्यू हेत।
0: वाह
1: जी
0: वाह सर,
1: तो देखो सा आपने जो को काम है आपने जो को कर्म है वो अपन कर तो रहना चाहिए। और खेती जी की अब बढ़िया बनाने के लिए अब धीरे धीरे रासायनिक जो को तरीका है वो छोड़ गए और धीरे धीरे आप प्राकृतिक खेती है जैविक जगह तरीका है भी अपनाना शुरू करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, तो आप रो में घणो घणो धन्यवाद देवा।
1: और इतनी अच्छी जानकारी ने सुन गए आपने जो किसान भाई लोग है भी जरूर फायदा उठा से सुन भाई।
0: बिल्कुल,
1: और आज को वो कार्यक्रम हो इंगज का संयोजक हा बेहा नवीन सिसोदिया।
0: तो अगले अंक में फिर मिला ला
1: बिल्कुल तो अब चला सुमन भाई,
0: चला,
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा,
1: सा
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
2: श्रोता भी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम खेती री बाता टांटिया यूनिवर्सिटी रा साथ। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुने ये देशभक्ति गीत। फिल्म का नाम पूर्व और पश्चिम, आवाज महेंद्र कपूर और साथी।

श्रोता, अभी आप पूरब और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत मीडियम वेव 326.70 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM 100.1 MHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से स्पोर्ट्स स्कैन।

ब्रायन शेल्टन ने कनाडा ओपन टेनिस जीता। डूरेंट कप फुटबॉल में शिलोंग लाजोंग एफसी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जमशेदपुर एफसी और बोडोलैंड एफसी ने भी अपने अपने मुकाबले जीते। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में कल भारतीय पुरुष टीम का सामना नीदरलैंड से होगा और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सिंकफील्ड कप के चौथे

0: में जॉर्डन 1 फॉरेस्ट को हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में देश के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं।
1: In the recently concluded Commonwealth Games in Glasgow, women have won 8 out of India's total tally of 13 gold medals.

0: वहीं पुरुष सिंगल्स में बेन शेल्टन ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: टोरंटो में खेले गए फाइनल में स्वेतेक ने कैनेडियन टूर्नामेंट में जारी अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए पहले सेट में ही बढ़त बना ली। दूसरे सेट में दो मिस बैकहैंड ने स्वेतेक को एक और ब्रेक दिया। रैबाकिना एक चैंपियनशिप पॉइंट बचाने में कामयाब रही, लेकिन स्वेतेक ने पिछले सितंबर के बाद से अपना पहला खिताब हासिल करने के लिए दूसरे मौके को भुना लिया। यूएस ओपन के मद्देनजर स्वेतेक के लिए ये जीत बहुत अहम है। अमरीका के बेन शेल्टन ने लगातार दूसरी बार कैनेडियन ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में शेल्टन ने अपने ही देश की पांचवी वरीयता प्राप्त ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3-7-6 से हराया। शेल्टन का ये दूसरा एटीपी मास्टर्स खिताब है। बेन शेल्टन खिताबी जीत के साथ ही इस सदी में एंडी मरे, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बाद अपने कनाडा ओपन खिताब को सफलतापूर्वक बचाने में सफल रहने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। शेल्टन ने बिना कोई सेट गंवाए इस सीजन का चौथा खिताब जीता। इससे पहले 2026 में डेलास, म्यूनिक और स्टुटगार्ट में वे जीत हासिल कर चुके हैं। अमरीकी खिलाड़ी के नाम अब 7 एटीपी टूर खिताब हैं। नाकाशिमा अपने पहले मास्टर्स फाइनल में हिस्सा ले रहे थे और अपना दूसरा एटीपी टूर टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे थे। नाकाशिमा ने अपना पहला खिताब 2022 में सैन डिएगो में जीता था। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है खिलाड़ियों ने। इगा स्वेतेक की बात कर ली या बेन शेल्टन की, लेकिन मेंस डबल्स और वुमेन्स डबल्स में क्या कुछ रिजल्ट रहा आज?
2: देखिए प्रशांत, अगर मेंस डबल्स की बात करें तो राफेल मेटोस और ओरलैंडो लूस की जोड़ी ने मैट पाविक और मार्लेलो ओरेविलो की जोड़ी को 5-7, 6-4, 10-6 से हराया। इसके अलावा अगर वुमेन्स डबल्स की बात करें तो कैटरीना सिनिकोमोवा और जांग सुजाई ने सारा ईरानी और नरोलो मार्टिनेज को 6-3, 6-4 से हराया। इन दोनों मुकाबलों की बात अगर हटाएं तो एक ब्रेंडन नाकाशिमा ने जो अपने पहले 1000 मास्टर्स फाइनल में हिस्सा ले रहे थे और वो अपने दूसरा टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपना जो पहला टाइटल है वो 2022 में जीता था, हालांकि वो इस प्रयास में असफल रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित किया।
0: डूरंट का फुटबॉल टूर्नामेंट में शिलोंग लाजोंग एफसी ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: शिलोंग लाजोंग एफसी की इस जीत से ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर एफसी की क्वार्टर फाइनल में जगह भी पक्की हो गई है। मुकाबले के 26वें मिनट में जोटा ने विपक्षी टीम के डिफेंस को भेदते हुए गोल किया। 4 मिनट बाद शिलोंग लाजोंग ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। दूसरे हाफ की शुरुआत में लैंगसनिंग के मुखिम ने 49वें मिनट में गोल करके अंतर को आधा कर दिया। 63वें मिनट में वाडाजीद ने शानदार हेडर मारकर स्कोर बराबर कर दिया। 82वें मिनट में शिलोंग लाजोंग को सफलता मिली। सना के हेडर ने लिंगदो को छकाते हुए गोल किया। लैंगसनिंग की ओर से अहमद ने हेडर से गोल किया और मैच बराबरी पर ला दिया। इसके बाद ये मुकाबला 3-3 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। वहीं ग्रुप सी के आखिरी मैच में जमशेदपुर एफसी ने इंडियन एयरफोर्स एफटी को 6-0 से करारी शिकस्त दी। इस शानदार जीत में 17 वर्षीय लामसांग ज्वाला की 25 मिनट में लगाई गई हैट्रिक और अमन सीके के बेहतरीन खेल का अहम योगदान रहा। मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने अपना दबदबा बनाते हुए चौथे मिनट में बढ़त हासिल कर ली। हाफ टाइम तक जमशेदपुर 1-0 से आगे रही। 55वें मिनट में लोमसांग ज्वाला ने गोल करके जमशेदपुर की बढ़त को दोगुना कर दिया। 64वें मिनट में लोमसांग ज्वाला ने जमशेदपुर को तीसरी सफलता दिलाई। अमन सीके ने आखिरकार 71वें मिनट में गोल करके अपना नाम स्कोर शीट पर दर्ज कराया। 80वें मिनट में लोमसांग ज्वाला ने अपनी हैट्रिक पूरी की। 17 वर्ष सब्स्टिट्यूट रियान ने 84वें मिनट में छठा गोल किया। ग्रुप एफ के अपने आखिरी मैच में कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी को 6-0 से शिकस्त दी। हलीचरण नार्जरी ने बोडोलैंड एफसी के लिए 4 गोल दागने के साथ 2 गोल में असिस्ट भी किया। भले ही बोडोलैंड ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन टॉप 2 रहने वाली टीमों में से एक के तौर पर नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस मैच में हलीचरण नार्जरी ने दोनों हाफ में 2-2 गोल दागे, जबकि ब्रेक के बाद कौशिक देमारी और गुआगुआमसार गयारी ने भी गोल करके बोडोलैंड एफसी की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: टूर्नामेंट में लगातार टीमों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। जमशेदपुर एफसी और बोडोलैंड एफसी ने भी

0: अपने अपने मुकाबले जीतकर अपनी उम्मीदें बनाए रखी है। मैदान की ओर भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को कायम रखना चाहेगी। भारतीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज की कमान संभालेंगे। वहीं साई सुदर्शन की टीम से बाहर होने के बाद देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। देवदत्त ने अभ्यास मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेली थी। अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की बल्लेबाजी को सुदृढ़ करेंगे। वहीं ध्रुव जुरेल भी पहले से ही स्क्वाड का हिस्सा है। टीम में सरफराज खान की वापसी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के मुकाबले में इन दोनों में से किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है। अनुभवी रविंदर जडेजा लोअर डाउन द ऑर्डर में भारतीय टीम को बल्लेबाजी में मजबूती देंगे। उनके साथ साथ मानव सुथार और सारांश जैन ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। वहीं गेंदबाजों में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी को स्क्वाड में शामिल किया गया है। भारतीय WTC की पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 5वें स्थान पर है। मुकाबले से पहले कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि टीम को WTC के फाइनल में जगह बनाना है।
2: वेरी कंफर्टेबल विद द रोल एंड आई थिंक द काइंड ऑफ वे वी हैव बीन यू नो प्रोग्रेसिंग इन द पास्ट 1 ईयर हैज बीन वेरी प्लीजिंग टू सी इन माय पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक वी आर टेकिंग ऑल द राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन एंड ऑब्वियसली द मेन गोल इज टू प्ले द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल व्हिच इज नेक्स्ट ईयर एंड वी हैव गॉट अबाउट 9 टेस्ट एंड आई थिंक वी हैव टू विन अराउंड 6 और 7 टू बी एबल टू हैव अ गुड चांस एट क्वालिफाइंग। So in terms of that, I think this is a very important series for us and we have had the right kind of preparation leading up to the series.
1: Captain Shubman Gill ne warm-up match mein shatakiye ke liye wale Devdutt Padikkal ki prashansa ki. Wahin dusri aur Sri Lanka team gharelu maidan par jeet darj kar WTC ki umeedein barqarar rakhna chahegi. Vaishnavi Sports Scan.
0: लगातार विशेष इधर टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मुकाबले भी खेले जा रहे हैं। कैसा रहा आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मुकाबलों का हाल?
3: ये प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। आज दो दिन का खेल समाप्त हो चुका है और बांग्लादेश 153 रनों की लीड के साथ मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए थे और उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा योगदान जो है स्टीव स्मिथ ने दिया था। 109 गेंदों पर 71 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ के अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है 50 का आंकड़ा नहीं छू पाया था। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें हम बांग्लादेश की, तो हसन महमूद ने सबसे ज़्यादा 6 विकेट चटकाकर बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया था। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात करें तो तंजीद हसन तमीम ने 101 रन बनाकर बहुत ही मजबूत शुरुआत दिलाई थी बांग्लादेश को। उसके बाद मोमिनुल और नजम हुसैन सांतो और मुशफिकुर रहीम ने 49, 84, 36 रन के योगदान देकर टीम के जो लीड है उसमें अहम भूमिका निभाई। और अंतिम बल्लेबाजों की श्रेणी में मेहंदी हसन मिराज ने भी 32 रनों का योगदान दिया।
0: जी, और श्रोताओं आपको बता दें कि बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। विशेष अगर हम इस श्रृंखला की बात की जाए तो आज दूसरा ही दिन है और न जाने कितने रिकॉर्ड बने हैं और कितने ध्वस्त हो गए। कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं इस सीरीज में अब तक?
3: प्रशांत, ये सीरीज काफी ऐतिहासिक है क्योंकि 23 साल बाद जो है बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर कोई टेस्ट मुकाबला खेलने जा रही है। अगर हम पहले रिकॉर्ड की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 433 जो विकेट थे रंगना हैरत के, उसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड से विकेट लेने के लिए जो है उन्होंने अपने नाम कर लिया है रिकॉर्ड। वहीं तंजीद हसन पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने शतक लगाया है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में, तो ये काफी ऐतिहासिक है और ये सीरीज सभी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।
0: अगर विशेष बात की जाए तो दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और बांग्लादेश जो है 153 रन की लीड ले चुका है और कल से भारत और श्रीलंका की टेस्ट श्रृंखला भी शुरू हो रही है और WTC में जैसा कि शुभमन गिल ने भी बताया कि वो फाइनल खेलना चाहते हैं, तो अगर बांग्लादेश ये मुकाबला जीतता है तो किस तरीके से ये भारत के पक्ष में जाएगा?
3: प्रशांत, अगर बांग्लादेश ये मुकाबला और साथ ही साथ ये सीरीज जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया जो पहले स्थान पर मौजूद है 87.5 अंकों के साथ, उनके अंकों में काफी गिरावट आएगी और भारत के लिए ये बहुत ही बेहतर संकेत होंगे। सिर्फ भारत को अपने मुकाबलों पर ध्यान देना है और दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं उनको भी क्या बोलते हैं कि पछाड़ना चाहिए।
0: जी, और चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। हॉकी विश्व कप कल से नीदरलैंड्स में शुरू हो रहा है। भारतीय पुरुष टीम कल नीदरलैंड

0: के एम्स्टर्डम में वेल्स से मुकाबला करेगी। वहीं महिला टीम रविवार को चीन से खेलेगी।
1: लगातार दो ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम कल वेल्स के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर उपहार देना चाहेगी। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत ने एकमात्र विश्व कप 1975 में कुआलालंपुर में पाकिस्तान को हराकर जीता था। इससे पहले 1971 में कांस और 1973 में रजत पदक अपने नाम किया था, लेकिन पिछले 51 साल में पोडियम पर जगह बनाने में भारतीय टीम नाकाम रही है। भारत इंग्लैंड से 17 अगस्त को और पाकिस्तान से 19 अगस्त को लीग चरण में खेलेगा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम उसी मानसिकता और तैयारी के साथ उतरेगी जो पिछले दो ओलंपिक में थी।
2: वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। वर्ल्ड कप का प्रेशर एक अलग होता है, इंडिया से बाहर हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, जो भी टारगेट हमारे सामने है, ऐसे हम टीम उसको लें और ऐसे टीम उसको फेस करें। डेफिनेटली आई थिंक कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बट उसके लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो चीज वहाँ पे रहेगी एंड वी बिलीव के जो हमने ट्रेनिंग की है, जो हमने लास्ट मैचेस खेले हैं, उसको लेकर आई थिंक टीम बहुत पूरे कॉन्फिडेंस में है एंड आई बिलीव के हम।
1: वहीं भारतीय महिला टीम को स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे की कप्तानी से बहुत उम्मीदें हैं। सविता पूनिया और बिचू देवी टीम में गोलकीपर हैं। ब्रैक फ्लिकर दीपिका सहरावत पर गोल करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने जून में नेशंस कप में शानदार प्रदर्शन किया था। नवनीत कौर और युवा मिडफील्डर साक्षी राणा पर भी सबकी नजरें रहेंगी। भारतीय टीम 16 अगस्त को चीन से, 18 को दक्षिण अफ्रीका से और 20 अगस्त को इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। नए प्रारूप वाले इस विश्व कप में खेल प्रशंसकों को भारतीय टीम से शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीदें हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: बात शतरंज पर, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने पिछले दौर में हार के बाद शानदार वापसी करते हुए सिंगफील्ड कप के चौथे दौर में नीदरलैंड्स के जॉर्डन वान फॉरेस्ट को हराया और संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में देश को गौरवान्वित करने के लिए भारतीय रक्षा बलों की मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास की सराहना की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
5: आर्थिक अनुमानों के अनुसार

0: भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।

0: सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय शिक्षा महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया
0: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है
0: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है
0: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें
1: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया इसका भाव है अपने देश से प्रेम करो सर्वहित बढ़ाओ देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया
2: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था वो वित्त वर्ष 2025-26 में

0: रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
4: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
1: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रत्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: श्रोतो, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार हैं पंकज उदास। आइए सुने इन्हीं की आवाज में ये गजल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत और आज के कलाकार थे पंकज उदास। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 14.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। आइए अब सुने पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू।

जी हाँ दोस्तों, ये तिरंगे वाला गीत सुने ते आवाज़ से मनजीत ते मिस पूजा दी। ते दोस्तों हुन जिहड़े सुनेहे आ ओह असी वट्सअप ते पूरे पढ़ते, ते जिहड़े साडे साथी ने वट्सअप लिख के सुने सन तक भेजे सी, गलबात लिखी सी, वो गलबात भी पढ़ती दोस्तों थोड़े तक पहुँचाती। ते साडे हुन बारी आ दोस्तों जीमेल ईमेल दी। ते दोस्तों पहला ये मेल पहुँच गया जी साढ़े कोल, झज्जर हरियाणा तो बिट्टू भाटिया, रीटा रजत ते मयंक भाटिया ने सानू लिख के भेजा जी। आह मेल पहुँच गया जी साढ़े कोल भिलाई तो, उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष ते नंदनी, इन्होंने भी सानू मेल लिख के भेजे ते स्वतंत्रता दिवस की लख लख बधाइयां लिख के भेजे जी, शुक्रिया दोस्तों। अगला मेल पहुँच गया जी साढ़े कोल, कहिंदे जसवीर सिंह भरा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, ते रब तुहानू भरपूर असीम देवे, शुक्रिया दोस्तों। आ जिहड़ी आसीस आ ना तुहाडी बहुत जरूरी है। तो कहते जी भी चार लाइना लिख के भेजियां जी, कहते रब वसदा विच इनसाना ते, सब कहते वेद पुराण, पर यह गल बंदा समझे ना, बन चुका है अनजान। बंदा होके बंदे नू मार रहा, कहे पत्थरां नू भगवान, पर रब कहिंदा सब नू प्यार करो तुसी, की हिंदू सिख ईसाई ते की मुसलमान। मैं किसे नाल कोई वितकरा नहीं कीता, सब नू बनाया ते एक समान, पर तुसी पता नहीं क्यों बना दिते मेरे एक दे लखा भगवान, मेरे एक दे लखा भगवान। यह चार लाइना बहुत सोहनिया लिख के भेजिया ने जी, हनुमानगढ़ नाईवाला तो वैद बिड्डा ते अलका बिड्डा ने, शुक्रिया बिड्डा साहब, थोड़ी लाइना पहुँच गई साढ़े तक ते तुसी प्रोग्राम ते सुन रहे हो। ते अगला सुनेहा पहुँचा जी मेल दे उपर, सहारनपुर तो साढ़े साथी ने शाइना नाजिया इब्राहिम, ते इन्हां दे बहुत सारे साथी, ते कहिंदे जी मेरा देश महान, बिल्कुल भारत देश महान है जी, इह कोई शक नहीं। ते अगला मेल पहुँचे जी मजनू दा टीला तो, कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकाकंक्षा, गुड़िया ते माही मलिक दा। ते आह सुनिया पहुँचे जी साढ़े कोल साढ़े साथियों दा चूरू राजस्थान तो, संदीप सिंह सोनागरा, प्रदीप सोनागरा, सोनल सोमल, कार्तिक, सचिन ते इन्हां दे साथी। अगला सुनेहा पहुँचे जी साढ़े कोल साढ़े साथियों दा, ते इह साथी ने जी साढ़े आदर्श नगर मलोट पंजाब तो, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगी शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा ते निवान शर्मा ने। ते कहिंदे जी बहुत बहुत मुबारक जी स्वतंत्रता दिवस दी, तुहानू भी बहुत बहुत मुबारक। ते इह सुनेहा पहुँचे है जी साढ़े कोल साढ़े साथियों दा, ते कहिंदे जी प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल वड्डे वीर जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत बधाइयां तुहानू स्वतंत्रता दिवस की। आकाशवाणी सूरतगढ़ के सारे ही प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत वधिया लिखते हैं, तो सानू हमेशा तुहानू रब हमेशा खुश रखे, शुक्रिया जी। तो यह सुनेहा लिख के भेजे जी सोनू रविराज, गुलशन लक्की ते जलंधर सिटी तो, कहते जी कोई भी गीत सुनो तो गीत सुनवावे दोस्तों, पर कुछ एक मेल शामिल कर लिए। अगला मेल पहुँचे जी साढ़े कोल साढ़े साथियों का, तो यह हनुमानगढ़ टाउन तो लिखते हैं, रजाक मुहम्मद, सलीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जशीन खान। तो कहते जी प्रोग्राम वधिया लगता है, तो 15 अगस्त के अज दिन लख लख मुबारक भेज रहे हैं जी, शुक्रिया जी, थोनों भी बहुत बहुत मुबारक। तो कहते जी प्रोग्राम चंगा लगता, सारे बैठ के परिवार के लोग असी कट्ठे बैठ के सुनते हैं प्रोग्राम, शुक्रिया जी, ये साड़ी खुशी का आह वक्त है कि असी ऐसा प्रोग्राम पेश करते, तुसी सारे परिवार बैठ के प्रोग्राम सुन दो और सुन सकते हो। अगला सुनेहा मेल ते पहुँचे जी मध्य प्रदेश तो, अशोक वर्मा, अर्चना आनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा ते भाई राजकुमार बड़ोना। ते यह लिखते ने जी मध्य प्रदेश तो, शुक्रिया जी, थोड़ा यह सुनेहा पहुँच गया जी। ते अगला सुनेहा पहुँचे जी साढ़े कोल सांबा जी नगर तो, राजेश, राजदीप, राशी ते शीतल, राजेश का भी सुनेहा पहुँचे जी साढ़े गुंडू गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश तो, मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना, नाच नावेश शेख ने भी सानू मेल लिख के भेजा जी। अगला सुनेहा पहुँचे जी साढ़े साथियों का, तो ये जिहड़े साथी ने साढ़े लिख रहे ने जी छत्तीसगढ़ तो, रिजवान खान, आयाशा, सभिया, अनस ते रेहान ने लिख के भेजा जी सुनेहा। अगला सुनेहा जी खोखरा वाली तो, विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा लिखते ने जी, कहते जी प्रसारक महोदय जसवीर

जी हाँ दोस्तों, ये तिरंगे का गीत तुहानू सुनवा दिता दोस्तों। तो मेल साढ़े कोल इक्का दुक्का पहुँच रहे हैं, तो असं उस मेल का स्वागत करते हैं जी। लो जी, ये अखीरी विच जिवें कि आदत है साढ़े दारेबाई का, चुटाला हरियाणा तो दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा बिल्कुल अखीरी दे विच हाथ पाते हैं जी। गड्डी नू फटाफट पिछले डब्बे चढ़ जाते हैं जी, अज भी चढ़ गए जी। तो खैर दारिया, गल तो यह है कि भी लास्ट समय के उत्ते तुसी मेल लिख के भेज दिओ, पर सानू चंगा बहुत लगता, तेरा इंतजार रहिंदा अखे मेल का। तो अज भी तुसी आ मेल पाया है ना जिहड़ा, सानू खुशी बहुत हुई है। खैर प्रोग्राम के अंदर असी गल कर रहे सी दोस्तों कि अगला प्रोग्राम जिहड़ा अपना 28 तरीक का प्रोग्राम है दोस्तों, हैलो मिट्टी की खुशबू प्रोग्राम, उहदे विच असी थोड़ा टैलीफोन कॉल्स का इंतजार करांगे। इहदी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जिहड़ी हुंदी है सवेरे दोस्तों करीबन 11 बजे असी शुरू करते हैं, तो 11:30 तक जिहड़े भी प्रोग्राम च साडे लिसनर्स ने जिहड़े फोन करते हैं उन्होंने गलबात करके असी उन्होंने गीत उहदे मनपसंद गीत सुनवाने। तो इतकी भी असी दोस्तों इस प्रोग्राम च थोड़ी जिहड़ी फोन है फोन कॉल्स उन्हों का असी बेसब्री ना इंतजार करांगे। खैर दोस्तों, अगला गीत बिल्कुल तैयार है, जब तक कोई मेल नहीं पहुँचता गीत सुन लेने, उस तो बाद फिर जो मेल पहुँचनगे तो असी मेल में शामिल कर लाँगे। सुनो यह गीत।

जी दोस्तों, प्रोग्राम मिट्टी दी खुशबू इस टाइम तुम सुन रहे हो आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल सूरत करतों। थोड़े खत और वट्सअप के स्नेहे ते मेल ते जिहड़े स्नेह पहुँचे ने जी असीं शामिल किए हैं। दोस्तों, अज का यह प्रोग्राम तुहानूं किवें लग्या ये जरूर सानूं थोड़े खतों के मार्फत, थोड़े मेलों के मार्फत और थोड़े टैलीफोन कॉल्स के मार्फत और वट्सअप के मार्फत सानूं जरूर दस्यो। और दोस्तों, प्रोग्राम के अंदर तुसीं मेल सानूं लिख दिओ। मेल के अंदर दोस्तों एक बेनती जरूर है कि जो तुसीं मेल लिखो थोड़ा जिहा उहदे च गैप जरूर पा दिया करो अक्खरां दे विच, क्योंकि दोस्तों जो मेल तुसीं इकट्ठे एक शब्द नाल जोड़ के लिख दिओ तो थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस करके नाम का अक्खर का वेरवा थोड़ा जिहा गैप विच होवे, थोड़ा उहदे च थोड़ा जिहा फासला होवे तां फिर पढ़न का आसानी हो जाती है। खैर दोस्तों, प्रोग्राम के अंदर असीं गीत जिहड़े भी गल कीती, गीत सुनवाए तुहानूं, तो प्रोग्राम इस टाइम चल रहा जी। तुसीं प्रोग्राम के अंदर गीत भी सुन रहे हो, गीत भी सुनवा रहे हैं। तो तिरंगा और कल दी असीं गल करिए 15 अगस्त की, तो कल 15 अगस्त तो आप जी सारे सुनने वालों नूं तो स्वतंत्रता दिवस दी लख लख ते बहुत बहुत बधाइयां दोस्तों। तो इस वक्त तुसीं गीत दी चंद लाइना फिर तो सुनो जी।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू। मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओ, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले सुने ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओ, फिल्म संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं की सेवा में आज नमस्कार जसवीर सिंह की तरफ से। दोस्तों, ये गीत की धुन सुनते ही निश्चित रूप से आपके मन में फिल्म का नाम जरूर पहुंच गया होगा। जी हां, फिल्म तुम सा नहीं देखा, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत मजरू का, संगीत ओपी नैयर का, और ये गीत हमने लिया है शमी कपूर के ऊपर फिल्म आई गई। इस गीत की बात हम करते हैं। दोस्तों, आज की हम बात करें तो शमी कपूर फिल्म अभिनेता

0: जिन्होंने आज के दिन यानी 14 अगस्त 2011 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। दोस्तों यूं तो इन्होंने बहुत हिट फिल्में दी और मैं जैसे जंगली, तुमसा नहीं देखा, दिल दे के देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल, अंदाज, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्माचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम किया था। और दोस्तों इन ब्रह्माचारी फिल्म में इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। खैर दोस्तों आज हम इनको श्रद्धांजलि देते हुए इनके ऊपर फिल्माए चंद फिल्मी गीत सुनते हैं। पहला गीत तुमसा नहीं देखा फिल्म से, सुनिए ये गीत।
1: तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अगर हम शम्मी कपूर की बात करें तो दोस्तों, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को हुआ था और 14 अगस्त 2011 को 79 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। और दोस्तों, इन्हीं के पर फरमाया एक गीत हम और देख सुन लेते हैं। दिल दे के देखो फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: थिएटर्स के साथ काम शुरू किया और 1953 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनके कैरियर में 100 से अधिक फिल्में रहीं और 1950-70 के दशक में वे हिंदी सिनेमा के बड़े सितारों से गिने गए और शमी कपूर को एल्विस प्रेसली ऑफ इंडिया भी कहा गया है, क्योंकि उनकी ऊर्जा, डांस स्टाइल और व्यक्तित्व बहुत ही अलग था। उन्हें स्क्रीन पर एक नई तरह की युवा जोशीली छवि बनाई जो उस दौर में बेहद लोकप्रिय हुई। और दोस्तों, इसी तरह की एक फिल्म थी जंगली, जिसमें उन्होंने गीत पर अपने अभिनय का जो जौहर दिखाया वो फिल्म था, गीत था अय्या सुक्कू सुक्कू। जी हाँ, ये गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का।
1: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु,

0: दीवाना ना कहे कोई परवाना कहे जलने को बेपरार चाहत का मुझ पे असर मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर मंजिल है मेरी प्यार
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू अय्या

0: हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है, कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए

0: रेडी है क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800।
2: श्रोताओं, शम्मी कपूर को जहां उनकी ऊर्जा स्टाइल, डांस स्टाइल, व्यक्तित्व और स्क्रीन पर युवा जोशीली छवि बनाई थी, वहीं उन्होंने कई फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिनमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे सम्मान शामिल हैं। और दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया, उनका निधन 14 अगस्त 2011 को मुंबई में हुआ और उनकी 79 वर्ष में उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी एक लोकप्रियता बनाई जो आज भी वो मौजूद है। और दोस्तों, अब हम बात करें उनके जोशीले की, उनकी डांस की, उनकी अभिनय की, तो उसी कश्मीर की कली फिल्म में एक गीत दीवाना हुआ बादल, वो गीत हम आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा गीत और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में, गीत है सच बिहारी का, संगीत ओपी नैयर का।

श्रोताओं, साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति से बतौर अभिनेता शम्मी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा। शम्मी कपूर की शुरुआत फिल्मी जीवन ज्योति, रेल का डिब्बा और गुल सनोवर थी। शम्मी कपूर ने मुख्य अभिनेता के रूप में 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और सहायक भूमिकाओं में 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी 1968 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। खैर दोस्तों, अगला गीत हम तीसरी मंजिल फिल्म से सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

0: हम आकाशवाणी के कोटनसरी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 11:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। आइए अब सुने आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाडा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।